नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे दुर्गम और असीम शांत द्वीप की कल्पना की है जो तूफानी समंदर के पार बादलों से भी ऊपर किसी शांत क्षितिज पर स्थित हो? उस द्वीप पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जहाज़ों के साथ निकले। बड़े बड़े साहसी नाविकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन समंदर के भयानक थपेड़ों और अपनी भारी नावों के कारण वे सब रास्ते में ही थक हार कर लौट आए। उन्होंने कह दिया कि उस पार जाना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन तभी एक बहुत ही साधारण, निष्कपट और सरल हृदय वाला व्यक्ति आता है, जिसके पास न कोई बड़ा जहाज है और न कोई घमंड। उसके पास केवल परमात्मा के प्रति अटूट प्रेम और

विश्वास की एक छोटी सी पतवार है। वह सहजता से उस पार पहुंचता है और केवल वहां पहुंचता ही नहीं बल्कि उस शांत सुरम्य द्वीप पर हमेशा के लिए अपना सुंदर सा घर बनाकर आनंद में रहने लगता है। अध्यात्म का जो परम धाम है वह भी ऐसा ही एक अगम द्वीप है जहां दुनिया की कोई भी सांसारिक ताकत नहीं पहुंच सकती। कबीर साहब आज हमें उसी परम सौभाग्य और शाश्वत विश्राम का दर्शन करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह जागृत और अलौकिक सूत्र। सुर नर थाके मुनि जन जहां, जहां न कोई जाई। सुर नर थाके मुनि जना, जहां न कोई जाई। मोटे भाग कबीर के तहां रहे घर छाई। सुर नर मुनि जन थाके जहां,

श्रोताओं, कबीर साहब उस परम आध्यात्मिक स्थिति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, सुर नर थाके मुनि जना। उस परम पद, उस शून्य शिखर तक पहुंचने की साधना में सुर यानि देव योनि के प्राणी, नर यानि साधारण सांसारिक मनुष्य और मुनि जना यानि वेदों और शास्त्रों का मनन करने वाले बड़े बड़े ऋषि तपस्वी भी अपने अहंकार, हठ और बुद्धि प्रयासों के कारण थाके यानि बुरी तरह थक गए। जहाँ न कोई जाए, क्योंकि वहाँ वह स्थान इतना अगम और पवित्र है कि वहाँ कोई भी सांसारिक मैं या कर्मकांडों का बोझ लेकर न कोई जाए यानि पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन कबीर की स्थिति क्या हुई? अगली पंक्ति में वे अपने परम सौभाग्य पर इतराते हैं और रहस्य खोलते हैं। मोटे भाग कबीर के, यह इस कबीर का कितना मोटा भाग यानी कितना परम अहोभाग्य और गुरु कृपा का प्रताप है। तहां रहे खर छाए कि जिस शून्य शिखर पर बड़े बड़े ज्ञानी झांकने तक में असमर्थ रहे, कबीर ने उसी परम धाम में, उस परमात्मा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए अपनी कुटिया छाई यानी अपना स्थायी घर बना लिया और अब वही अखंड आनंद में विश्राम कर रहा है। यह दोहा सहज समाधि और जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है। सुर और नर वे हैं जहां क्रमशः स्वर्गिक भोगों और सांसारिक वासनाओं में उलझ कर थक जाते हैं। मुनिजन वे हैं जो केवल बौद्धिक विश्लेषण और शुष्क ज्ञान में उलझ कर थक जाते हैं। परमात्मा किसी योग्यता, शास्त्र ज्ञान या शारीरिक बल से नहीं मिलता, वह केवल अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और सद्गुरु की अहेतुकी कृपा से प्राप्त होता है। घर छाई का दार्शनिक अर्थ है चेतना का अपने मूल आत्मस्वरूप में सदा के लिए स्थिर हो जाना, जहाँ से फिर कभी संसार के भटकाओं में लौटना नहीं पड़ता। कबीर समझा रहे हैं कि जब साधक अपनी अहंता को शून्य कर देता है तो शून्यता में परमात्मा स्वयं अपना घर बना देता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हम किस चीज़ को अपना सौभाग्य मानते हैं। हम थोड़ा सा धन, कोई बड़ा पद, मकान या सांसारिक मान सम्मान मिल जाने पर खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, लेकिन यह सब तो एक दिन छूटने वाला नश्वर साजो सामान है। असली सौभाग्य क्या है? असली सौभाग्य है उस परम परमात्मा के चरणों में, उस राम नाम के धाम में अपने मन का स्थायी घर बना देना। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की उस थकान को मिटाने की, व्यर्थ के भौतिक तर्कों को और सांसारिक दावों को छोड़ने की। एक छोटे बच्चे की तरह निष्कपट होकर उस परम सत्ता की शरण में बैठ जाइए। आप जब आपके भीतर अनन्य भक्ति और गुरु कृपा का प्रकाश जागेगा, तो आप भी उस अगम धाम में अपने सच्चे आत्म घर को पा लेंगे, जहाँ केवल अखंड शांति, परमानंद और अमृत की वर्षा होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

भाग 72 बा तथागता मनुष्य यह मानवीय संस्कार से परिपूर्ण हो उसके लिए प्रज्ञापूर्ण मनुष्य को तूने शील संवर्धन से युक्त दर्शाया। आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस मार्ग पर चलने से मनुष्य केवल मानवीय अवयवों का पुंज मात्र नहीं रहता बल्कि वह उसके संपूर्ण विवेकी आचरण से मनुष्य बन जाता है। मानव की मानवीयता निश्चित होती है उसके नैतिक आचरण से, यह नैतिक आचरण अति महत्व रखता है। चतुष्पाद प्राणियों से मनुष्य की अलग पहचान नैतिक आचरण से ही होती है। वह पर पीड़ा को जान सके, अच्छे कार्य के लिए स्वयं के सुखोपभोग का त्याग करे। नीतिमान मनुष्य संस्कृति का रक्षण एवं संवर्धन करता है, वह किसी भेदभाव में विश्वास नहीं करता। विश्व कल्याण के भाव का मार्ग उसमें सर्वोपरि होता है, वह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसमें मनुष्य की इच्छा शक्ति को महत्व होता है। इसका पहला मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी अविद्या का विनाश, सम्यक दृष्टि यानी मिथ्याचार का त्याग। सम्यक दृष्टि अविद्या का नाश करती है। अविद्या किसे कहते हैं? मनुष्य को दुख का अस्तित्व तथा दुख निरोध का उपाय ये उदात्त सत्य समझ में न आना अविद्या है। सम्यक दृष्टि का हेतु है मनुष्य कर्मकांड की विधियों को व्यर्थ समझकर उसे त्याग दे। मिथ्या विश्वास और आडंबर, शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत अद्भुत कल्पना का त्याग करना सम्यक दृष्टि पुष्ट होने के लिए। कोई भी बात निसर्ग नियम के विरुद्ध है ऐसा नहीं मानना। सम्यक दृष्टि के व्यक्ति के जिन सिद्धांतों को वास्तविकता और अनुभव का आधार है उन्हें योग्य, और जो काल्पनिक अनुमानाधिष्ठित है उन्हें अस्वीकृत कर नकारना है। जिन्हें करना नहीं आता अविद्या का नाश, उनमें नहीं स्थिर हो पाती सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि बिना मनुष्य अंधेरी कोठरी का कैदी जैसा है। सम्यक दृष्टि बिना मनुष्य बिना आकलन का नासमझ जैसा है। तब सम्यक दृष्टि विकसित करने के लिए इच्छा शक्ति को गति प्रदान करना है, तब टूट जाएगी बंधन की डोर और हो जाएगा वह मुक्त। बढ़ जाएंगे कदम आजादी की ओर सम्यक दृष्टि के बल से। इसीलिए मन बंधन मुक्त हो, योग की दिशा में परिवर्तन हो मन का, तब होगा विकास मानव का और समझेगा महत्व सम्यक दृष्टि के अंतिम उद्देश्य का। अन्यथा बिना सम्यक दृष्टि मनुष्य की होगी दुर्गति, अंधेरी कोठरी में कैदी सा जिसकी मति मारी गई हो। सम्यक दृष्टि से आकलन होता है दुख सत्य, दुख समुदाय सत्य, दुख निरोध सत्य और दुख निरोध का मार्ग। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, ऐसी चिकित्सक दृष्टि निर्माण होती है सम्यक दृष्टि के कारण। ज्ञानात्मक अनुभूति की स्थिरता को सक्षम व सम्यक बनाती है संभव

नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, ये पसायदान का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी ली, एक कथा भी सुनी हमने, और ये पसायदान क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है इसके ऊपर चर्चा भी की, कहानी सुनी, चिंतन किया। ऐसे ही हमारे माउली ने, ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से, विश्वात्मक देव से, विश्वात्मक भगवान से पसायदान मांगा है। पहले पहले जब मैं उसे पढ़ता था, उसको चैंट करता था, बोलता था मुख से, क्योंकि सिर्फ 9 लाइन है, 9 चरण है, 9 ओवी है, और पढ़ने में और बोलने में कितना वक्त लगता है, 3 मिनट भी नहीं लगते। अभी इस 3 मिनट में वो जो ओवी है, जो शब्द है, उसका अगर गहराई तक जाके अर्थ नहीं समझेंगे तो 3 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये राजयोगा का ज्ञान मुझे मिला तो दृष्टि बदल गई, और उसके ऊपर गहराई से चिंतन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली। और ये चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माउली ने जो पसायदान मांगा है उसमें इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मांगा है। कामना जो है, इच्छा जो है, रिक्वेस्ट जो है, या बाप के पास बेटे की डिमांड जो है, वो है इस धरती पे स्वर्ग लाना। आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि इस धरती पे स्वर्ग लाना मींस क्या है, क्योंकि ये स्वर्ग जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं ये स्वर्ग सुख है, स्वर्ग, हेवन, गो टू हेवन कभी कहते हैं हम लोग, जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गो टू हेल, लेकिन जब प्यार आ जाता है तब कभी प्यार से कहते हैं गो टू हेवन नहीं, कहते जरूर है हेवनली ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग सुख है। स्वर्ग ऐसी चीज है जहां दुख की कल्पना भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई स्वर्ग में जाता है, या हम कहते हैं यह स्वर्ग पधारा, तब क्या करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं? एक्चुअली सही पूछा जाए तो हमें हंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह गया है, लेकिन रोते हैं। इसका कई लोगों ने यह भी समझाया है कि बिकॉज वी आर पार्टिंग, हमारा वियोग हो जाता है शरीर से, वो दूर चले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर ये बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और यह विषय भी नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि यह स्वर्ग, स्वर्ग जो हम कहते हैं, यह स्वर्ग जो है, हेवन जो है, ये इतना अच्छा है, यह कल्पना आई है मींस कहीं ना कहीं पहले होगा। एवरीबडी, और चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये कल्पना जो है स्वर्ग की या जन्नत की या हेवन की, ये तो है। ये स्वर्ग जो है या जन्नत जो है या हेवन जो है, वो पहले कहाँ था? अगर मैं कहूँ पहले इसी धरती पे था, इसी पृथ्वी पे था, और इसी भारत में था। यस, भारत में था, और भारत में था बिकॉज इट वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारत है, मेरा भारत, और यही कल्पना लेके अभी अब्दुल कलाम जी भी आए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पावरफुल इंडिया इन 2020। उसमें कहीं ना कहीं बेस है, या ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। और यह स्वर्ग क्या है इसके ऊपर बहस नहीं करनी है,
मुझे यह कहना है कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान में मांगा है, यह स्वर्ग इस धरती पे लाने के लिए मांगा है। अभी यह स्वर्ग तो मांग लिया उन्होंने, यह स्वर्ग कैसे मांगा है उसका वर्णन जो है वो पसायदान में है, एक एक लाइन में है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और इसी स्वर्ग को हम राम राज्य भी कहते हैं। राम राज्य गांधी जी का हम कहते हैं, गांधी जी के मन में था कि ये भारत में राम राज्य आएगा। अभी ये राम राज्य जो है, जो हम कहते हैं राम राज्य चाहिए राम राज्य चाहिए, उसमें हमें क्या अभिप्रेत है, व्हाट वी थिंक? ये राम राज्य जब कहते हैं तब उसमें रावण है, राम की सीता रावण भगा के लेके जाएगा, मारीच है, लक्ष्मण है, या राम जी का वनवास है? अगर राम राज्य चाहिए हमें तो ये सब चीजें उसमें अपेक्षित है। डू वी थिंक दैट जब राम राज्य आएगा तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर? कुंभकर्ण भी होगा, या हमें राम राज्य कुछ अलग ही चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम सब कहते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। और चिंतन जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हम थोड़ा हट के जा रहे हैं, कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कॉन्शियस को ये कोई चीज छूती है, कोई भाती है, तो वो सही ही हो जाएगी। हमें जो राम राज्य चाहिए, हमें जो राम राज्य, या गांधी जी को जो राम राज्य चाहिए, जो हम कहते हैं राम राज्य, मुझे नहीं लगता कि उसमें हम रावण की अपेक्षा करते हैं। राम राज्य ये है ऐसे आइडियल रूलिंग, आदर्श। और हमेशा आइडियल जो होता है उसमें 100% परफेक्शन होता है। और ये 100% परफेक्शन जो है पुरुषोत्तम, 100% परफेक्शन जो है वो जब परफेक्शन था उसी को स्वर्ग कहते हैं। और एक जमाना था कि वो परफेक्शन भारत में ही था, इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो। वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो हम स्टोरीज भी ऐसे बनाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग। जब मैं ये सुनता था लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, तो ये किंग जो है, राजा जो है, कितना पुराना है? लॉन्ग लॉन्ग एगो, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग एगो। और ये लॉन्ग लॉन्ग एगो में जो किंग था, वही किंग को भारत में लक्ष्मी और नारायण कहते हैं। और वही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और उस वो स्वर्ग कहते हैं। और ये स्वर्ग कैसा था, उसका वर्णन कैसा चाहिए, उसका वर्णन माउली ने पसायदान में किया है। देखो विजन कितना श्रेष्ठ है। 700 साल पहले माउली ने यह विजन लिया कि मेरा भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व। भारत के लिए नहीं मांगा पसायदान उन्होंने, सारे विश्व के लिए मांगा है। और ये विश्व के लिए पसायदान जो मांगा है उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्होंने अपने चिंतन में दिया है, उसका रोडमैप है। और ये रोडमैप जो है वो अगले पंक्तियों में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्या हो गई थी, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे। आप भगवान को कहते हैं, विश्वात्मक देव को माउली कहती है कि ये जो मैंने अभी तक ज्ञानेश्वरी के विवेचन किया
वाक यज्ञ जो वाणी का यज्ञ जो रचा उससे आप प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। कैसा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। स्वर्ग ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी है, चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई कहता है स्वर्ग में चलो तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। है कोई तैयार? तो ऐसी चीज है जो दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। Nobody is ready। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्वर्ग जो कल्पना है, संकल्पना है, हमने ठीक तरह से उसे समझा ही नहीं है, और इसलिए शायद स्वर्ग के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन ये पसायदान में माउली ने जो स्वर्ग के लिए रोड मैप दिया है, वो बहुत सोच समझ के दिया है। उन्हें बिल्कुल मालूम है यह स्वर्ग क्या चीज है और ये यहाँ ही कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है, सोच समझ के किया है। तो ये स्वर्ग जो है कैसे मांगा है? तो शुरुआत में जो हमने श्लोक या ओवी पसायदान की शुरुआत जो है, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने। क्या पसायदान है, इसके बारे में आगे विवेचन है। माउली कहते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रति वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांसे। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, जो मेरे मराठी नहीं जानने वाले या मराठी जानते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि ये उनका अर्थ शायद समझ में नहीं आता होगा। खल जो है, जे खड़ांची, जे क्या चाहिए पसायदान में, तो ये चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। सो उसमें उन्होंने कहा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खल मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट लोग। जे खड़ांची, खल मीन्स बुरे, बुराई। तो ये जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स खल जो है उनके अंदर, व्यंकटी, व्यंकटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ेपन, टेढ़ापन, सीधा साधा नहीं, टेढ़ापन। तो ये टेढ़ापन जो है या दुष्टपना, दुष्टता, दुष्टता जो है मन में, ये होने के कारण आदमी क्या बन जाता है, खल बन जाता है। इसलिए हमेशा अगर हम चित्रपट या पिक्चर में देखते हैं, एक नायक रहता है और दूसरा खल नायक रहता है। खल नायक क्या है? दोनों दिखने में एक जैसे ही, दोनों को आंखें हैं, नाक है, होठ है, मुख है, दो हाथ है, दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक, सिर्फ नायक है और उसमें जो खल नायक है उसमें खल है। अगर ये खल हम निकालते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ नायक बचेगा। और इसलिए माउली ने खल जो है उनको नष्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो कोई दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग है, उनको नष्ट करने के लिए माउली ने नहीं कहा है, उनकी अंदर जो बुराई है उसे नष्ट करना है। और जब बुराई खत्म हो जाती है तब क्या बच जाता है? जब बुराई खत्म हो जाती है तब अच्छाई बच जाती है। इसलिए सुर और असुर, जो सुर में गाते हैं उनका गाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। सुर में गाते हैं, गाना अच्छा लगता है और हम कहते हैं महफिल जम गई। लेकिन अगर कोई बेसुरा गाता है तो गाना कैसे लगता है?
गाना अच्छा नहीं लगता, भले उसकी आवाज अच्छी है, लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुर में सुर नहीं है, ताल अलग है, सुर अलग है, इसलिए उसे बेसुरा कहते हैं। तो सुर और असुर में यही फर्क है, एक सुर में है, दूसरा सुर में नहीं है। और सुर क्या है, किसके सुर में गाना चाहिए, जो भगवंत है उसका सुर जो है, उसके सुर में अगर गाना हमारा आ गया तो ये सुरीला हो जाता है और सुनने के लिए बड़ा मजा आ जाता है। और यही अगर बेसुरा हो जाता है तो सुनने में मजा नहीं आता। तो ये जे खलांची व्यंकटी सांडो, जे खलांची व्यंकटी सांडो, खल पुरुष जो है उसके अंदर खलता, खल तुष्टता जो है उसे खत्म करनी है। तो क्या होगा अगर उसे अंदर, उसके अंदर जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी, जे खलांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ दुष्टता खत्म होने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भरना पड़ेगा। अगर मेरे क्लास में कुछ खराब चीज है और वो मैंने अगर फेंक दी, सांडो, सांडो ये शब्द बहुत अच्छा है, मराठी में सांडो मीन्स टू फॉल डाउन, एक्सपेल, अंदर कुछ पड़ा है ग्लास में तो कुछ भरेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और इट विल बी रिमूव। इसलिए कहते हैं जे खलांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, अंदर कुछ भरना चाहिए नहीं तो खालीपन महसूस होगा, और ये खालीपन जो है एम्प्टी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टीनेस मन में नहीं रहना चाहिए, अगर एम्प्टीनेस मन में रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, सत्कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म और दुष्कर्म, उसके डेफिनेशन बहुत, आप जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये लगता है सत्कर्म मीन्स सत के याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। सत कौन है, सत चित आनंद, जो परमात्मा जो है, वो भगवान जो है, उसके याद में अगर कोई भी मैं कर्म करता हूं तो ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद इतनी पावरफुल रहती है जो कर्म अच्छा ही रहता है। और दुष्कर्म में कहने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं है तो चांसेस है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, क्योंकि हर एक के अंदर देवता भी है और शैतान भी है, जब देवता निद्रिस्त हो जाती है तो शैतान जागता है, और शैतान को अगर सुलाना है तो देवता को जागृत करना है, इसलिए जागर कहते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा देवी का मंदिर रहता है उसमें जागर रहता है, जगाना है देवताओं को, जगाना है। हम मंदिर में जाके देवी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर जो देवता है उसे मैं जगाऊं तो सत्कर्म हो जाएगा, और ये सत्कर्म जो है तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, रतिवाड़ो मीन्स मुझे खुशी होनी चाहिए, सत्कर्म करते समय मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे रुचि होनी चाहिए, मेरा मन रमना चाहिए, मन रमता है, मन में खुशी होती है, ऐसे नहीं कि कोई कहता है इसलिए मैं जोर जबरदस्ती करूं, नहीं, अगर मैं खुशी से करूं इसलिए तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, एक बार खलता मन से निकल गई और अंदर सत्कर्म के लिए रुचि बढ़ गई, रति बढ़ गई, तो क्या होगा, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, भूता मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, और ये ह्यूमन बीइंग्स का भी बहुत बढ़िया अर्थ है, ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज बॉडी, हम बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, तो ह्यूमन इज बॉडी और बीइंग मीन्स सोल, ये ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है, बॉडी तो है, शरीर है,
लेकिन अंदर जो बीइंग मीन सोल आत्मा है उसे ध्यान रखना है। हम उसको भूल जाते हैं तो क्या होता है, खल प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर प्रेम भावना नष्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से। वो कैसे, मैत्र क्या है, भूत क्या है, प्रेम क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे छोड़ना जरूरी है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशी के लिए, और माफ करना जरूरी है। जिस दिन मैं माफ करना सीख जाऊंगी, क्योंकि जब हमने बात की थी तो समझ में आया था कि हम क्यों नहीं माफ़ करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अपने आप को कितना दर्द दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये समझे तो माफ़ करना आसान हुआ। आगे बढ़ते हैं, मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है तब क्या करूँ। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, माफ़ करना तो मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया, लेकिन मुझे किसी से माफ़ी मांगनी है। अब जब इतने अवेयर हो गए, इतने सजग हो गए, लगा कि मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलत था या थी, और बहुत वक्त भी गुजर गया है, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है, तब क्या करें?
1: तो बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट रेज किया है कि जब हम माफ़ी नहीं मांगते तो उस बोझ को लेकर के घूम रहे, और वो बोझ हमें तकलीफ देता है, शरीर पर भी इफेक्ट होती है, मन पर भी इफेक्ट होती है। अब प्रश्न यह है कि अगर नहीं मांग सके माफ़ी, तो ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पर बोझ है, रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, फिर भी मैं माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ, तो ये मेरा ईगो है। बस ये समझ ले कि ये मेरा अहंकार है कि मैं माफ़ी नहीं मांग पा रहा हूँ, और उस अहंकार को मुझे ख़त्म कर देना।
0: वाई डू आई फील गिल्टी? सी, उस वक्त जब मैंने किया था मैं सही थी, और उसके बाद क्योंकि मैं अपने आप को गलत नहीं मानना चाहती, मैं अपने आप को बहुत सारे वो देती जाती हूँ लॉजिक कि मैंने इसलिए किया था, ये हुआ इसलिए हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया था, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, उस वक्त रिएक्ट करना ज़रूरी था या ये ज़रूरी था ऐसा। लेकिन अब जब अवेयर हो रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि यही वो चीज़ है शायद कि जो मैंने क्रिएट की, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। अब ये गिल्ट है, कैसे जाऊँ मैं, नहीं जा पा रहे।
2: देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ मुझे उस समय लगता है कि जो मैंने किया वो सही है। इनफैक्ट हमेशा ही हमें लगता कि जो हमने किया वो सही है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें लगता कि नहीं, मेरा वो कर्म, मेरा वो एक्शन सही नहीं था। दैट इज़ वन प्लेस वेर आई कुड फील गिल्टी एंड मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ओके, अभी भी, उस दिन भी, आज भी, और शायद हमेशा मेरा वो बहुत एक्यूरेट बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, जो मैंने किया वो सही था। लेकिन कई बार मेरा कुछ सही भी उस बात की वजह से किसी और के अंदर दर्द चल रहा है। भले हमें ये समझ में आ रहा है कि उनका हर्ट वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वन थिंग आई अंडरस्टूड इज दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग समबडी एल्सेस हर्ट, नो वन कैन हर्ट मी, आई कांट हर्ट समवन। लेकिन समवन कैन यूज व्हाट आई हैव डन टू हर्ट देमसेल्व्स। तो भी कहीं ना कहीं मेरा कर्म स्टिम्युलस तो बना ना, वो कर्म मेरे लिए सही था। सपोज मैंने आपको कुछ कह दिया, ऐसा मेरे हिसाब से मैंने सही कहा, लेकिन आप उस बात को लेकर अगर हर्ट हो रहे हैं, तो जितनी देर आप हर्ट हैं वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी किसकी तरह ट्रैवल होगी? मेरी तरफ ट्रैवल होगी। अब मैं सही हूँ, फिर भी क्या मैं सॉरी कह सकती हूँ? और क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं सही हूँ, जो मैंने कहा वो सही है, क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए?
0: दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू से सॉरी, यू नो, बिकॉज़ वी से कि मैं तो सही हूँ।
2: अब क्या होगा अगर हम नहीं सॉरी कहते हैं? एंड सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी हमें मिलती जाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत थे, हम सोचते हैं कि हम सही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, और ये सॉरी अपॉलोजी इसीलिए अटक जाती है बीच में बात, कौन सही है कौन गलत है, सॉरी कहूँ या नहीं कहूँ, सॉरी कहूँ तो वो ऊपर से कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो मुझे कमज़ोर तो नहीं फील करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो फॉरगिव करेंगे? कईयों के अंदर ये बहुत डर है, चलो मैं तो सॉरी कह दूँ लेकिन क्या वो फॉरगिव करेंगे? मैं उन्हें सॉरी कहने जाऊँ वो वापस मुझसे कैसे बात करेंगे? तो ये सारे डाउट्स जब मन में चलते हैं, देन वी स्टॉप आवरसेल्फ। from finishing that negative karmic account. Ye ek negative energy exchange hai, blockage hai, jisko hume smooth karna hai. Need to think about this, but.
0: Agar ye nahi hua, agar sorry nahi hua, chahe main galat hoon ya nahi hoon, ye realization hai mujhe. Dono baaton mein, agar main sahi hoon, tab to main kai baar kehta hoon ki sawal hi nahi uthta ki main sorry kahunga. Lekin agar main galat hoon, तब भी मैं सॉरी नहीं कह पा रहा इसी कारण से कि वो मुझे माफ करेंगे या नहीं करेंगे या उनका अपर हैंड हो जाएगा यू नो वो मुझे दबा पाएंगे तो ये जो गिल्ट है या ये जो है ये मेरे को क्या तंग कर रहा है
1: कि ये बात भी जो शिवानी बहन ने कही वो अच्छे से समझनी चाहिए कि चाहे मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं सही हूँ लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है तो मैं समझ लूँ उनको हर्ट तो हुआ मैं सही सिर्फ मेरे नजरिए से था उसके नजरिए से तो मैं गलत था तो अगर मैं वहां पर आई नो आई पुट माय फुट इन ही शूज एंड देन सी कि भी कहाँ हर्ट हो रहा है तब मुझे रियलाइज होगा कि भी हर्ट तो हो रहा है और मुझे माफी मांगने से अगर वो हर्ट दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और दूसरी बात कि अगर मैं नहीं मांगता हूं तो उनसे नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कंटिन्यूस मिल रहे हैं वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है और इससे भी मुझे हार्म होगी अल्टीमेटली क्योंकि वो ऑरा मेरे तक पहुंचता है और मुझे उसका नुकसान होगा इसलिए भी मुझे माफी मांगनी है और ये छोटी सी बात है वास्तव में तो
0: लेकिन मैं गलत ही नहीं
2: जब आपको अपोलोजाइज करना है ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दूं ये नहीं है दिस इज नो चीटिंग ईच अदर मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही हूँ मैं अपोलोजाइज जो मैंने किया उसके लिए नहीं कर रही हूँ मैं अपोलोजाइज इस बात के लिए कर रही हूँ कि आप हर्ट हैं टू थिंग्स आर डिफरेंट आप दर्द में हैं उस बात के लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ नॉट जो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ किया ये कांच टूट गया इतना बड़ा ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी लेकिन मेरी गलती से टूटी आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली सो बट यू आर नाउ सो मच इन पेन सो आई अंडरस्टैंड दिस कि मेरे किसी एक्शन ने आपके अंदर ये दर्द क्रिएट किया So I am sorry, not for breaking the table, but I am sorry for having become an instrument for you to experience so much pain. वो तो सत्य है ना? वो तो झूठ नहीं है ना? हाँ ये ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया या मेरे को लगता है ये सही था, whatever. लेकिन आप दर्द में हैं, is this a fact? So I am sorry for you having to go through so much pain. This can be say sorry to each other. भले I was right. But you are in pain. I'm sorry for that.
0: लेकिन वहाँ से फिर result नहीं आता है।
1: नहीं result आएगा। देखो कभी करके देखिए। जब हम sorry कहते हैं, तब आप देखेंगे कि जो wonderful results मिलेंगे। सबसे पहले तो कई बार ये होता है सामने वाले व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं आपकी तो गलती थी नहीं तो सारी चीज resolve हो गई। आप ही उस बोझ को लेकर के घूम रहे थे। दूसरी बात कि वो व्यक्ति रोने लगेगा। तो भी हुआ कि उन्होंने माफ कर दिया हो सकता है कि अभी हंसने भी लगे और चलो ये भी एक पॉसिबिलिटी है आप कहेंगे कि भाई उसने माफ नहीं किया लेकिन आपने तो माफी मांग ली आप तो हल्के हो गए वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है
0: अगर नहीं मांगी माफी अगर गिल्ट में हूं मैं या ये सब कुछ चल रहा है व्हाट इज हैपनिंग टू मी व्हाई आई नीड टू डू दिस
1: तो अंदर तो आपके वो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना सूक्ष्म में इफेक्ट हो रही है जिससे टॉक्सिक इमोशंस का काबल उससे थोड़ी कम परंतु वो इफेक्ट हो रही है और वो इफेक्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकती है क्योंकि अंदर में आप बोझ को लेकर के घूम रहे हैं खुशी का अनुभव नहीं करेंगे
0: डॉक्टर अभी आपने कहा कि आप उस कर्म के लिए सॉरी नहीं हो अगर लेकिन उस इमोशन को आपके अंदर क्रिएट करने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं उसके लिए सॉरी हो सकते हैं तो जो जैसे मैं माफी मांग रही हूँ वो तो उम्मीद करता है कि अब उस कर्म के लिए आई शुड फील सॉरी
2: लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग अपने आप को थोड़े समय पहले देखते हैं जब हमें ये नहीं समझ में आया था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स तब हम ये फील करते थे कि उन्होंने जो कहा उससे मेरा हर्ट क्रिएट हुआ नेक्स्ट प्रोग्रामिंग ये हुआ करती थी कि वो सॉरी कहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा होता था ना इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम चल रहे थे कि मैं बुरा भी तब फील करता हूँ जब कोई कुछ कहता है अच्छा भी तब फील करता हूँ जब कोई उसको चेंज करता है दैट्स द पावर ऑफ सॉरी पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू हियर दैट सॉरी उनकी कोडिंग अंदर ये हुई है कि जैसे ही ये सॉरी कहेंगे I will feel fine. ये बहुत definite है, definite coding हमारी हुई हुई है. वो ये नहीं realize कर रहे कि पहले उनके sentence को मैंने लिया hurt create करने के लिए, अब उनके sorry को मैं लेता हूँ अपने आप को better feel कराने के लिए. Sorry is works as a stimulant, provided you're not just saying it ऊपर से, you're really feeling it. कई बार आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे, आप उनको sorry कहें, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपने realize किया है. आप कहेंगे really, I'm really sorry for what has happened. No, I don't think. मेरे को लगता है आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं. You know why? अभी उनका दर्द नहीं गया. जब तक उनका दर्द नहीं जाएगा, आपका sorry सच्चा नहीं था. आप चार बार, पांच बार, दो महीने के बाद फिर से, छह महीने के बाद फिर से कहो, the day they are healed, they'll say, now you have realized. Because now I am healed.
0: अच्छा, it doesn't matter कि सामने वाला
2: शायद छह महीने पहले ही रियलाइज कर चुका था कि वो सॉरी है, लेकिन मेरी हीलिंग नम जब तक नहीं होती ना, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है. इतना डीप मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि जिस दिन वो रियलाइज कर लेगा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये कभी नहीं समझा था कि मेरा दर्द मैं खुद ठीक करती हूँ. वी कीप ऑन, देयर आर टाइम्स व्हेन वी कीप ऑन डिमांडिंग सॉरीज फ्रॉम पीपल. सॉरी बोलो फॉर व्हाट यू हैव डन. व्हाई? आप सॉरी बोलेंगे आई विल फील बेटर. दिस इज अ वेरी सटल वे कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं. अब वो अपने को कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने को भी फ्री करने में और सामने वाले को भी फ्री करने में.
0: नो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेट करते हैं. हम भी तो वेट कर रहे होते हैं.
2: हम तो वेट
0: कि वो सॉरी कहे.
2: yes.
0: और एक्चुअली हम कई बार वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन भी तो हो.
2: हाँ, तो रियलाइजेशन कब? जिस दिन मेरा दर्द खत्म हो गया उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया. दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग. हाउ डू आई कम टू नो कि आपके अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे?
0: सी, वंस यू रियलाइज, अगेन सॉरी कोई ऐसे नहीं कह देता. मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो देन आई विल कम एंड हैव अ टॉक विद यू मे बी कि व्हाई आई डिड दिस, और या ऐसे मैंने किया था तो ये सही नहीं था. आई शुडंट हैव डन दिस.
2: नेक्स्ट मंथ यू माइट डू इट अगेन. आपने रियलाइज किया? नहीं. आप फील कर रहे हो कि हाँ आई एम सॉरी. नेक्स्ट मंथ यू माइट रिपीट द सेम थिंग एब्सोल्युटली ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत था ही नहीं. वो आपके हिसाब से गलत नहीं था, या वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो आपकी संस्कार बना हुआ है. रियलाइजेशन मीन्स स्टॉप, चेक, चेंज, गॉन. कितनी चीजें हम इतनी जल्दी चेंज कर पाते हैं? नहीं, हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया, इट्स नॉट अ रियलाइजेशन. लेकिन आपका वो एक सॉरी मुझे हेल्प कर देता है टू फ्री माई सेल्फ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन.
0: एंड इज इट देन यूजुअली वी आर सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज, सॉरी फॉर क्रिएटिंग हर्ट टू यू, नॉट बिकॉज आई एम रॉन्ग?
2: या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड फील, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, मदर गुस्सा होकर बैठ गई या मदर रोने लग गई, बच्चे अपने गलती के लिए नहीं सॉरी कह रहा होता. बच्चा अपनी मदर को ऐसे देख रहा होता है ना कि मेरी मदर, मेरी ये बात की वजह से मेरी मदर रो रही है. वो अपनी मदर को चुप कराना चाहता है. बच्चा कई बार रो रहा होता है, मदर चाहती है कि बच्चा चुप कर जाए. मदर बच्चे को कहती है, बच्चे आई एम सॉरी मैंने तुमको ऐसा. व्हाई? शी वांट्स दैट द चाइल्ड शुड गेट हील्ड. द चाइल्ड वांट्स दैट द मदर शुड गेट हील्ड. सो व्हाट इज इट, व्हाट आर वी डूइंग विद ईच अदर? हम एक दूसरे को दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं. कर्म के बारे में तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते.
0: लेकिन अगली बार हमारे सामने वो कर्म आता है, हम दो बार सोचते हैं, because it's going to hurt my mom.
2: Yeah, because it's going to hurt my mom, not because the karma is right or wrong. See, that is the thing. आप अपने बच्चे को कुछ एक चीज, उसको सपोज आपने अपने बच्चे को कहा कि स्कूल बंक करके नहीं जाना चाहिए, he might still like that thing. उसको अभी भी अच्छा लग रहा है वो आइडिया, लेकिन इट माइट हर्ट माई मॉम, दैट इज वाई आई विल नॉट डू इट. इक्वेशन इज वेरी डिफरेंट. आई हैव नॉट रियलाइज दैट द एक्शन इज रॉन्ग. मेरा उस पर नहीं है रियलाइजेशन अभी. मेरे को सिर्फ टेम्प्ररी, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही ये हुआ था, थोड़े दिन के बाद जब मुझे वो हर्ट वाला सीन भूल जाएगा, आई विल स्टिल थिंक ऑफ बंकिंग स्कूल एंड गोइंग. तो मेरी रियलाइजेशन एक्शन के बारे में नहीं, मेरी रियलाइजेशन कि आपको दर्द हुआ, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए सॉरी. दो बातों में काफी फर्क है.
1: पहली बात अगर हो जाए, मुझे रियलाइज हो कि मेरी एक्शन गलत थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, तो सुपीरियर है. तो सदा के लिए खत्म हो जाएगा.
2: देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ना. देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, लेकिन हम जो यू नो रो देते हैं एक दूसरे को इमोशनली, यू नो गिल्ट में फील, बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स क्या करते हैं, बात करना बंद कर देंगे. दिस इज अ वे ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड कि मैं नहीं बात करूंगा. बच्चे के लिए पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, यू नो स्पेशली जब बहुत छोटे, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे से नाराज है. वो गोल गोल गोल गोल घूमता रहेगा सॉरी सॉरी सॉरी कहते हुए. वट आर वी ट्राइंग टू डू? वी ट्राइंग टू टीच हिम अ लेसन, बट दिस इज नॉट द वे. वी आर टीचिंग हिम द रॉन्ग इक्वेशंस इन लाइफ. एक्चुअली उसको उस एक्शन के प्रति लेके जाने की बजाय, उस कर्म में क्या गलती हुई, उसका क्या रीजन था, वी जस्ट शोड हिम I am hurt and you have to say sorry. Aapka sorry bolne se, I will become better. And that is what is happening even after we grow up. The equations just go on to being the same thing. Hum ek dusre ko hurt dekhte hain, fatafat sorry bolte hain taki aapka mood theek ho jaye. Bhale main galat tha ya nahi tha, main sorry bol diya. Taki aap theek ho jao, matlab aap upset nahi ho itna. That's all that we're doing. But we need to understand ki this does make a difference to other people. And most important, मेरे लिए बहुत यूजफुल है वो, प्रोवाइडेड आई एम फीलिंग इट फ्रॉम इनसाइड, फील करके करें. आजकल कई बार हम सिर्फ ऐसे ही सॉरी बोल देते हैं ताकि आप ठीक हो जाओ, देन इट वोंट वर्क.
0: नहीं तो फील करके हम क्या कर्म पे काम करेंगे फिर भी?
2: दोनों बातें हैं ना. अगर कर्म आपको लगा कि गलत है तो आप कर्म पे काम करेंगे, या ये आपको लगा कि कौन सा कर्म से किसको दर्द क्रिएट होता है तो आप उस बात पर काम करेंगे. लेकिन कुछ तो काम करेंगे ना, कहीं तो अटेंशन रखकर अपने अंदर परिवर्तन लेंगे. सॉरी को सिर्फ एक शब्द की तरह यूज करके रिश्तों में एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे ना. यू विल रियली वर्क ऑन व्हाट यू आर सेइंग टू ईच अदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई भाई बहने ऐसे मिलते हैं, दे आर गिल्टी कि उन्होंने कोई अपने पेरेंट के साथ या कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसा किया था एंड देव लेफ्ट द बॉडी. कहते कुछ ऐसा करवा दो जिससे हम एक बार उनको सॉरी कह सके. यू नो इतना गिल्ट दे कैन कैरी एंड उससे उनकी पूरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज टाइम रहते हमने वो सॉरी नहीं कहा था. वो गिल्ट इतना बर्डन आपके साथ चल सकता है. सो इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द एंटायर पर्सनालिटी.
0: वही पूछा जा रहा है कि जो अब ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो गिल्ट की है, हर्ट की है, ये अगर हम कैरी करते जाते हैं, अगर लेट को नहीं किया है, सो वेयर डज इट लीड फिजिकली आल्सो?
1: फिजिकली आल्सो इट विल हैव द सिमिलर. जो भी ऑर्गन वीक है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, या स्पेसिफिक जो ऑर्गन पर उसकी इफेक्ट होनी है वह स्पेसिफिक ऑर्गन पर भी होगी. जैसे गिल्ट की जो फीलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकती है. इवन नो गिल्ट कैन अफेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की बीमारियां आपको होगी.
0: सप्रेस्ड फीलिंग्स या गिल्ट जो है, ये एक जो हम चुप हो जाते हैं, यू नो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि, और ये जो एक डर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तब हम शायद चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं. उसको उसको कैसे ओवरकम करें?
1: लेकिन हमने तो बोल दिया, एटलीस्ट हम तो हल्के हो गए. अगर वो व्यक्ति माफ नहीं करता है फिर भी भले हमें नेगेटिव इफेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, परंतु हमारी ओर से तो हम हल्के हो गए. एटलीस्ट 50% बेनिफिट हुआ. अब 50% उस व्यक्ति की गलती है, नहीं कर रहा है, बोले फिर से भी कहो.
0: पश्चाताप की जो बात है सर शिवाजी, पश्चाताप में जो रोना और पश्चाताप में जो हम अपने आप को वन गिल्ट में रख के बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, वो बहुत डैमेजिंग कई बार होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत अपना लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं.
2: दो बार गलती हो रही है ना, एक बार जब मैंने वो किया तब गलत एनर्जी क्रिएट की. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, बहुत जोर से अभी आपको कुछ कह दिया, तो अभी गलती हो गई. अब उसके बारे में मैं 4 दिन गिल्ट में रहूं, हाँ मैंने इस तरह से बात कर दी, मैंने उस तरह से बात कर दी, तो वो गलती एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई. सो गिल्ट इज वेरी वेरी डैमेजिंग. आज हम बहुत सारी बातों की वजह से गिल्ट में हैं. गिल्ट इज नॉट द सोल्यूशन, पश्चाताप इज नॉट द सोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्यूशन. हाँ मैंने पिछली बार ऐसे बात की, ये गलत थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. मेजोरिटी टाइम वी सी कि सपोज मैंने आज आपसे गुस्सा किया, जोर से किया, कई दिनों तक मैं गिल्ट में भी रही, बुरा भी लगा, लेकिन अगली बार मेरे मुख से फिर उस तरह से बात निकल जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी देर मैं पश्चाताप में भी रही, मैं एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही थी? नेगेटिव. तो आत्मा की शक्ति और भी कम होती जा रही थी, जैसे ही स्टिम्युलस फिर से आया मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैं अगले कुछ दिन फिर पश्चाताप में रही। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कहते हैं जैसे हस्बैंड का वाइफ पर हाथ उठ जाता है, कहते हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, बहन आपको नहीं पता जब हम करते हैं हमें इतना बुरा लगता है, हम पक्का करते हैं, हम नहीं, फिर अगली बार फिर वही होता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए। ये सारी नेगेटिव थिंकिंग तो मेरी ताकत को और भी कम कर देती है, मेरी गलती बार बार रिपीट हो रही है। पश्चाताप मीन्स जो गलती मैंने की उसको मैंने अब रिपीट नहीं करना है, फुल स्टॉप। उसके बारे में सोचना सोचना सोचना इज एक्चुअली उस गलती को बार बार रिपीट करना। जितनी बार मैं उसके बारे में सोचूंगी मैं वही नेगेटिव एनर्जी खुद को भी और आपको भी भेज रही हूँ। सो इट्स जस्ट वन थॉट कि आई विल नॉट डू इट अगेन, चेंज माई थिंकिंग, फिर आप स्टिम्युलस चाहे कुछ भी दो।
3: But we always say we'll not do it again.
2: हाँ.
3: Not to even others.
2: To yourself.
3: अपने आप को भी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे।
1: पश्चाताप करना अच्छा है, लेकिन एक ही बार करो और टोटल चेंज।
2: मतलब it has to finish.
3: वो कैसे करें? नहीं हो पाता ना,
2: क्योंकि हमने अपने थॉट को नहीं चेंज किया।
3: क्योंकि वही बात है ना कि कर्म को चेंज करना तो चाहा हमने कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं पाता।
2: कहीं ना कहीं हम अभी तक जस्टिफाइड है अपने उस कर्म के लिए। सी दैट्स व्हाई इट्स कमिंग डाउन अगेन टू द सेम थिंग। मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उस समय जब मुझे गुस्सा आया था मेरे अंदर एक और थॉट है जो कहता है लेकिन मुझे गुस्सा तो इसलिए आया था ना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, तो एक्चुअली तो मेरा गुस्सा जस्टिफाइड था। तो मैंने अपने बिलीफ को नहीं बदला, थॉट नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने आप को कहा अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन नहीं बदला, वो एक्शन में फिर से आ जाएगा।
1: स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं किया।

0: नेक्स्ट टाइम मेरा रिस्पॉन्स मेरे कंट्रोल में होगा, तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये बात अब फिर से नहीं होगी।
1: उन्होंने गलती की लेकिन मैं गुस्सा करके दूसरी गलती कर रहा हूँ ना,
2: क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ।
1: हाँ, मैंने क्रिएट भी किया और दूसरी गलती, एटलीस्ट मुझे तो गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए भी मुझे गुस्सा नहीं करना है, इसलिए मैं सही बात को चूज करूँ।
2: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमने खुद ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया, अगर हम चाहते हैं तो उस बिलीव सिस्टम पर जाना पड़ेगा। और कौन सी ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे को आगे बढ़ने में रोकती हैं?
1: ये वास्तव में तो जो भी आज हम हैं, हम सब में कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, उन सब को अगर हम देखें तो उसके रूट में कुछ बिलीफ सिस्टम होती, एक भी हो सकती है, शायद दो तीन भी हो सकती है। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर सभी करें तो हम टोटली रूट को अच्छे से समझ सकते हैं, कि एक झाड़ का चित्र बनाएं और फिर आज हमारे में जो भी चीज़ें हैं कि कुछ अच्छाई है, जैसे भी मेरे में नम्रता है, एकाग्रता अच्छी है, मैं हार्डवर्किंग हूँ, ये अच्छी बातें। कुछ बुराइयाँ भी हो सकती कि मेरे में आलस है, गुस्सा है, गिल्ट फीलिंग है, वो पूरी लिखे और फिर ये ढूंढे कि इन सब के रूट में एक या दो कोई बातें हैं। देखो, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करता हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको डिप्रेशन लगता था, या तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक बैंक में थे लेकिन मुझे प्रोजेक्ट देते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, और लोग तो जल्दी कर लेते हैं। रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वाइफ वॉज वेरी गुड, स्टिल ही फेल्ट कि भी मैं उनकी संभाल ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। एक बेटी थी, उसका ध्यान नहीं रख रहा हूँ। ऐसे सारे उसके सिम्टम्स लिखे। जब फादर की डेथ हुई तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मैंने कहा देखो सारा ये परिवार है वह भी आपके साथ है और सब लोग आपको इतना सहयोग दे रहे हैं। जब यह बात क्लियर हो गई कि मैं अकेला नहीं हूं तो एकदम ठीक हो गए। उनकी दवाइयां भी चल रही थी, छूट गई 3-4 महीने। तो ऐसे एक बार वो रूट को अगर हम समझ ले तो सब कुछ दूर हो सकता है।
0: इमोशनल ब्लॉक्स, जैसे हार्ट में ब्लॉक्स, वैसे
1: इमोशन ब्लॉक्स है।
2: तो इमोशन ब्लॉक्स को समझा अगर, देखा, तो फिर उसको ठीक भी अपने आप कर पाएंगे क्या?
1: हाँ बिल्कुल, फिर से आत्मा के साथ ही काम करना है।
2: अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है,
0: डिटैच होकर जैसे औरों को बताते हैं अपने को बताना है। सी, अगर ये किसी के साथ भी और होता, कोई भी व्यक्ति उनको ये बता सकता, देखो आपकी वाइफ कितनी अच्छी है, यू हैव टू जस्ट बी एबल टू से इट टू योरसेल्फ। लेकिन उसके लिए अपने दर्द से डिटैच होना पड़ता है, दैट इज व्हाई सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स। ये सारी चीजें हम बहुत इजीली कर पाएंगे जब हम अपनी परिस्थितियों से डिटैच हो पाएंगे। हमें परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी जैसे वो किसी और की परिस्थिति है, विल बी एबल टू गिव द राइट थॉट्स टू आवर सेल्फ। लेकिन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वी स्पेंड सम टाइम विद आवर सेल्फ। यू नो, हमारा क्या हो रहा है, दर्द है, ब्लॉकेज है, नुकसान हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते जाओ, बहुत हम लगता है ये नेचुरल है मुझे, मैं ऐसा ही हूँ करके। वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट इट डाउन, फाइंड योर ब्लॉक, क्लीन योर ब्लॉक, दोनों काम हमें ही करने हैं।
2: रिजॉल्व करने की जो बात है कि जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ पाएगी।
1: कि आपको समझ में आ जाए तो भी वो रिमूव हो जाए।
2: तो ये रियलाइजेशन हमें अपने आप ही अपने आप को देखते देखते होगा। देखने की आदत तो होती जा रही है, समझ भी रहे हैं तरीका, सिर्फ ये नहीं पता था कि ये ब्लॉक्स जो हैं ना सिर्फ जीवन के हर सुख से, अगर शरीर के सुख देखें उससे भी हमें दूर कर रहे थे। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच। कोई बात मन में है आप हमें ईमेल या फोन पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, आगे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।

चोरी मत करो, तेरी लोई मत काट जा, हिंसा मत करो, दारू मत पियो, रंडी बाजी मत करो, अनेकी के मत चालो, गोर छोटे गोर करो, गोरू संस्कृति जतन करो।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे दुर्गम और असीम शांत द्वीप की कल्पना की है जो तूफानी समंदर के पार बादलों से भी ऊपर किसी शांत क्षितिज पर स्थित हो? उस द्वीप पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जहाज़ों के साथ निकले, बड़े बड़े साहसी नाविकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन समंदर के भयानक थपेड़ों और अपनी भारी नावों के कारण वे सब रास्ते में ही थक हार कर लौट आए।

प्रति अटूट प्रेम और विश्वास की एक छोटी सी पतवार है। वह सहजता से उस पार पहुंचता है और केवल वहां पहुंचता ही नहीं, बल्कि उस शांत सुरम्य द्वीप पर हमेशा के लिए अपना सुंदर सा घर बनाकर आनंद में रहने लगता है। अध्यात्म का जो परम धाम है वह भी ऐसा ही एक अगम द्वीप है, जहां दुनिया की कोई भी सांसारिक ताकत नहीं पहुंच सकती। कबीर साहब आज हमें उसी परम सौभाग्य और शाश्वत विश्राम का दर्शन करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह जागृत और अलौकिक सूत्र। सुर नर थाके मुनि जन जहां, जहान कोई जाई। सुर नर थाके मुनि जना, जहान कोई जाई। मोटे भाग कबीर के तहां रहे घर छाई। सुर नर मुनि जन थाके जहां,

श्रोताओं, कबीर साहब उस परम आध्यात्मिक स्थिति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं, सुर नर थाके मुनि जना। उस परम पद, उस शून्य शिखर तक पहुंचने की साधना में सुर यानी देव योनि के प्राणी, नर यानी साधारण सांसारिक मनुष्य और मुनि जना यानी वेदों और शास्त्रों का मनन करने वाले बड़े बड़े ऋषि तपस्वी भी अपने अहंकार, हठ और बुद्धि प्रयासों के कारण थाके यानी बुरी तरह थक गए। जहाँ न कोई जाए, क्योंकि वहाँ वह स्थान इतना अगम और पवित्र है कि वहाँ कोई भी सांसारिक मैं या कर्मकांडों का बोझ लेकर न कोई जाए यानी पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन कबीर की स्थिति क्या हुई? अगली पंक्ति में वे अपने परम सौभाग्य पर इतराते हैं और रहस्य खोलते हैं। मोटे भाग कबीर के, यह इस कबीर का कितना मोटा भाग यानी कितना परम अहोभाग्य और गुरु कृपा का प्रताप है। तहां रहे खर छाए कि जिस शून्य शिखर पर बड़े बड़े ज्ञानी झांकने तक में असमर्थ रहे, कबीर ने उसी परम धाम में, उस परमात्मा की गोद में हमेशा हमेशा के लिए अपनी कुटिया छाई यानी अपना स्थायी घर बना लिया और अब वही अखंड आनंद में विश्राम कर रहा है। यह दोहा सहज समाधि और जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है। सुर और नर वे हैं जहां क्रमशः स्वर्गिक भोगों और सांसारिक वासनाओं में उलझकर थक जाते हैं। मुनिजन वे हैं जो केवल बौद्धिक विश्लेषण और शुष्क ज्ञान में उलझकर थक जाते हैं। परमात्मा किसी योग्यता, शास्त्र ज्ञान या शारीरिक बल से नहीं मिलता, वह केवल अनन्य प्रेम, पूर्ण समर्पण और सद्गुरु की अहेतुकी कृपा से प्राप्त होता है। घर छाई का दार्शनिक अर्थ है चेतना का अपने मूल आत्मस्वरूप में सदा के लिए स्थिर हो जाना, जहाँ से फिर कभी संसार के भटकाओं में लौटना नहीं पड़ता। कबीर समझा रहे हैं कि जब साधक अपनी अहंता को शून्य कर देता है तो शून्यता में परमात्मा स्वयं अपना घर बना देता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हम किस चीज़ को अपना सौभाग्य मानते हैं। हम थोड़ा सा धन, कोई बड़ा पद, मकान या सांसारिक मान सम्मान मिल जाने पर खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, लेकिन यह सब तो एक दिन छूटने वाला नश्वर साजो सामान है। असली सौभाग्य क्या है? असली सौभाग्य है उस परम परमात्मा के चरणों में, उस राम नाम के धाम में अपने मन का स्थायी घर बना देना। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर की उस थकान को मिटाने की, व्यर्थ के भौतिक तर्कों को

और सांसारिक दावों को छोड़ने की। एक छोटे बच्चे की तरह निष्कपट होकर उस परम सत्ता की शरण में बैठ जाइए। आप जब आपके भीतर अनन्य भक्ति और गुरु कृपा का प्रकाश जागेगा तो आप भी उस अगम धाम में अपने सच्चे आत्म घर को पा लेंगे, जहाँ केवल अखंड शांति, परमानंद और अमृत की वर्षा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

72 बा तथागता मनुष्य यह मानवीय संस्कार से परिपूर्ण हो उसके लिए प्रज्ञापूर्ण मनुष्य को तूने शील संवर्धन से युक्त दर्शाया। आर्य अष्टांगिक मार्ग, इस मार्ग पर चलने से मनुष्य केवल मानवीय अवयवों का पुंज मात्र नहीं रहता बल्कि वह उसके संपूर्ण विवेकी आचरण से मनुष्य बन जाता है। मानव की मानवीयता निश्चित होती है उसके नैतिक आचरण से, यह नैतिक आचरण अति महत्व रखता है। चतुष्पाद प्राणियों से मनुष्य की अलग पहचान नैतिक आचरण से ही होती है। वह पर पीड़ा को जान सके, अच्छे कार्य के लिए स्वयं के सुखोपभोग का त्याग करे। नीतिमान मनुष्य संस्कृति का रक्षण एवं संवर्धन करता है, वह किसी भेदभाव में विश्वास नहीं करता। विश्व कल्याण के भाव का मार्ग उसमें सर्वोपरि होता है, वह मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसमें मनुष्य की इच्छा शक्ति को महत्व होता है। इसका पहला मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी अविद्या का विनाश, सम्यक दृष्टि यानी मिथ्याचार का त्याग। सम्यक दृष्टि अविद्या का नाश करती है। अविद्या किसे कहते हैं? मनुष्य को दुख का अस्तित्व तथा दुख निरोध का उपाय, ये उदात्त सत्य समझ में न आना अविद्या है। सम्यक दृष्टि का हेतु है मनुष्य कर्मकांड की विधियों को व्यर्थ समझकर उसे त्याग दे। मिथ्या विश्वास और आडंबर, शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत अद्भुत कल्पना का त्याग करना। सम्यक दृष्टि पुष्ट होने के लिए कोई भी बात निसर्ग नियम के विरुद्ध है ऐसा नहीं मानना। सम्यक दृष्टि के व्यक्ति के जिन सिद्धांतों को वास्तविकता और अनुभव का आधार है उन्हें योग्य, और जो काल्पनिक अनुमानाधिष्ठित है उन्हें अस्वीकृत कर नकारना है। जिन्हें करना नहीं आता अविद्या का नाश, उनमें नहीं स्थिर हो पाती सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि बिना मनुष्य अंधेरी कोठरी का कैदी जैसा है। सम्यक दृष्टि बिना मनुष्य बिना आकलन का नासमझ जैसा है। तब सम्यक दृष्टि विकसित करने के लिए इच्छा शक्ति को गति प्रदान करना है। तब टूट जाएगी बंधन की डोर और हो जाएगा वह मुक्त। बढ़ जाएंगे कदम आजादी की ओर सम्यक दृष्टि के बल से। इसीलिए मन बंधन मुक्त हो, योग की दिशा में परिवर्तन हो मन का, तब होगा विकास मानव का और समझेगा महत्व सम्यक दृष्टि के अंतिम उद्देश्य का। अन्यथा बिना सम्यक दृष्टि मनुष्य की होगी दुर्गति, अंधेरी कोठरी में कैदी सा जिसकी मति मारी गई हो। सम्यक दृष्टि से आकलन होता है दुख सत्य, दुख समुदाय सत्य, दुख निरोध सत्य और दुख निरोध का मार्ग। अविद्या संस्कार विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा, ऐसी चिकित्सक दृष्टि निर्माण होती है सम्यक दृष्टि के कारण। ज्ञानात्मक अनुभूति की स्थिरता को सक्षम व सम्यक बनाती है।

नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने क्या किया, यह पसायदान का मतलब क्या है इसके बारे में जानकारी ली, एक कथा भी सुनी हमने, और यह पसायदान क्या मांगना है, भगवान से क्या मांगना है इसके ऊपर चर्चा भी की, कहानी सुनी, चिंतन किया। ऐसे ही हमारे माउली ने, ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने भगवान से, विश्वात्मक देव से, विश्वात्मक भगवान से पसायदान मांगा है। पहले पहले जब मैं उसे पढ़ता था, उसको चैंट करता था, बोलता था मुख से, क्योंकि सिर्फ 9 लाइन है, 9 चरण है, 9 ओवी है, और पढ़ने में और बोलने में कितना वक्त लगता है, 3 मिनट भी नहीं लगते। अभी इस 3 मिनट में वो जो ओवी है, जो शब्द है, उसका अगर गहराई तक जाके अर्थ नहीं समझेंगे तो 3 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये राजयोग का ज्ञान मुझे मिला तो दृष्टि बदल गई, और उसके ऊपर गहराई से चिंतन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मिली। और ये चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि माउली ने जो पसायदान मांगा है उसमें इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए मांगा है। कामना जो है, इच्छा जो है, रिक्वेस्ट जो है, या बाप के पास बेटे की डिमांड जो है, वो है इस धरती पे स्वर्ग लाना। आइडिया अच्छी लगती है, लेकिन उसके पहले हमें यह देखना है कि इस धरती पे स्वर्ग लाना मींस क्या है, क्योंकि ये स्वर्ग जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत अच्छा है। हम बोलते ये स्वर्ग सुख है, स्वर्ग, हेवन, गो टू हेवन कभी कहते हैं हम लोग, जब गुस्सा आता है तो कहते हैं गो टू हेल, लेकिन जब प्यार आ जाता है तब कभी प्यार से कहते हैं गो टू हेवन नहीं, कहते जरूर है हेवनली ब्लिस, हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग सुख है। स्वर्ग ऐसी चीज है जहां दुख की कल्पना भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन जब कोई स्वर्ग में जाता है, या हम कहते हैं यह स्वर्ग पधारा, तब क्या करते हैं, रोते हैं या हंसते हैं? एक्चुअली सही पूछा जाए तो हमें हंसना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह गया है, लेकिन रोते हैं। इसका कई लोगों ने यह भी समझाया है कि बिकॉज वी आर पार्टिंग, हमारा वियोग हो जाता है शरीर से, वो दूर चले जाते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर यह बहस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है और यह विषय भी नहीं है, लेकिन मुझे यह कहना है कि यह स्वर्ग, स्वर्ग जो हम कहते हैं, यह स्वर्ग जो है, हेवन जो है, यह इतना अच्छा है, यह कल्पना आई है मींस कहीं ना कहीं पहले होगा। एवरीबडी, और चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, ये कल्पना जो है स्वर्ग की या जन्नत की या हेवन की, ये तो है। ये स्वर्ग जो है या जन्नत जो है या हेवन जो है, वो पहले कहाँ था? अगर मैं कहूँ पहले इसी धरती पे था, इसी पृथ्वी पे था, और इसी भारत में था। यस, भारत में था, और भारत में था बिकॉज इट वॉज ओनली वन कॉन्टिनेंट। तो ये जो भारत है, मेरा भारत, और यही कल्पना लेके अभी अब्दुल कलाम जी भी आए हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पावरफुल इंडिया इन 2020। उसमें कहीं ना कहीं बेस है, या ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स नहीं है, लेकिन वो हमें उसकी गहराई तक जाना चाहिए। और यह स्वर्ग क्या है इसके ऊपर बहस नहीं करनी है,
मुझे यह कहना है कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर जी ने जो पसायदान में मांगा है, यह स्वर्ग इस धरती पे लाने के लिए मांगा है। अभी यह स्वर्ग तो मांग लिया उन्होंने, यह स्वर्ग कैसे मांगा है उसका वर्णन जो है वो पसायदान में है, एक एक लाइन में है, उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और इसी स्वर्ग को हम राम राज्य भी कहते हैं। राम राज्य गांधी जी का हम कहते हैं, गांधी जी के मन में था कि ये भारत में राम राज्य आएगा। अभी ये राम राज्य जो है, जो हम कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, उसमें हमें क्या अभिप्रेत है, व्हाट वी थिंक? ये राम राज्य जब कहते हैं तब उसमें रावण है, राम की सीता रावण भगा के लेके जाएगा, मारीच है, लक्ष्मण है, या राम जी का वनवास है? अगर राम राज्य चाहिए हमें तो ये सब चीजें उसमें अपेक्षित है। डू वी थिंक दैट जब राम राज्य आएगा तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर? कुंभकर्ण भी होगा, या हमें राम राज्य कुछ अलग ही चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम सब कहते हैं इसलिए कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते। और चिंतन जब करना शुरू करते हैं तब हमें लगता है कि हम थोड़ा हट के जा रहे हैं, कहीं हम उसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे कॉन्शियस को ये कोई चीज छूती है, कोई भाती है, तो वो सही ही हो जाएगी। हमें जो राम राज्य चाहिए, हमें जो राम राज्य, या गांधी जी को जो राम राज्य चाहिए, जो हम कहते हैं राम राज्य, मुझे नहीं लगता कि उसमें हम रावण की अपेक्षा करते हैं। राम राज्य ये है ऐसे आइडियल रूलिंग, आदर्श। और हमेशा आइडियल जो होता है उसमें 100% परफेक्शन होता है, और यह 100% परफेक्शन जो है पुरुषोत्तम, 100% परफेक्शन जो है वो जब परफेक्शन था उसी को स्वर्ग कहते हैं। और एक जमाना था कि वो परफेक्शन भारत में ही था, इसलिए भारत को ही सोने की चिड़िया कहा जाता है, गोल्डन स्पैरो। वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग एगो। देखो हम स्टोरीज भी ऐसे बनाते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग। जब मैं ये सुनता था लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज ए किंग, तो ये किंग जो है, राजा जो है, कितना पुराना है? लॉन्ग लॉन्ग एगो। उसका कोई वर्णन नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टाइमलाइन नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग एगो। और ये लॉन्ग लॉन्ग एगो में जो किंग था, वही किंग को भारत में लक्ष्मी और नारायण कहते हैं, और वही लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, और उस वो स्वर्ग कहते हैं। और ये स्वर्ग कैसा था, उसका वर्णन कैसा चाहिए, उसका वर्णन माउली ने पसायदान में किया है। देखो विजन कितना श्रेष्ठ है। 700 साल पहले माउली ने यह विजन लिया कि मेरा भारत, और सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व। भारत के लिए नहीं मांगा पसायदान उन्होंने, सारे विश्व के लिए मांगा है। और ये विश्व के लिए पसायदान जो मांगा है उसमें कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्होंने अपने चिंतन में दिया है, उसका रोडमैप है। और ये रोडमैप जो है वो अगले पंक्तियों में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत क्या हो गई थी, आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदान हे। आप भगवान को कहते हैं, विश्वात्मक देव को माउली कहती है कि ये जो मैंने अभी तक ज्ञानेश्वरी के विवेचन किया
वाक यज्ञ जो वाणी का यज्ञ जो रचा उससे आप प्रसन्न हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए और मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए। कैसा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, ओम शांति।

नमस्कार, ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने स्वर्ग के बारे में चिंतन किया, चर्चा की। स्वर्ग ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी है, चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी है, एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई कहता है स्वर्ग में चलो तो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। है कोई तैयार? तो ऐसी चीज है जो दूर से ही अच्छी लगती है, लेकिन जाने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए किसी की तैयारी नहीं है। Nobody is ready। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्वर्ग जो कल्पना है, संकल्पना है, हमने ठीक तरह से उसे समझा ही नहीं है, और इसलिए शायद स्वर्ग के बारे में हम ये कहते हैं। लेकिन ये पसायदान में माउली ने जो स्वर्ग के लिए रोड मैप दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। उन्हें बिल्कुल मालूम है यह स्वर्ग क्या चीज है और ये यहाँ ही कैसे आएगी, इसके बारे में बहुत अच्छा चिंतन किया है, सोच समझ के किया है। तो ये स्वर्ग जो है कैसे मांगा है? तो शुरुआत में जो हमने श्लोक या ओवी पसायदान की शुरुआत जो है, आता विश्वात्म के देवे येणे वाग्य ज्ञे तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने। क्या पसायदान है इसके बारे में आगे विवेचन है। माउली कहते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मे रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, जो मेरे मराठी नहीं जानने वाले या मराठी जानते भी है लेकिन फिर भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि ये उनका अर्थ शायद समझ में नहीं आता होगा। खल जो है, जे खड़ांची, जे क्या चाहिए पसायदान में, तो ये चाहिए, फॉलोइंग थिंग्स, फॉलोइंग पॉइंट्स। सो उसमें उन्होंने कहा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, खल मीन्स दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट लोग। जे खड़ांची, खल मीन्स बुरे, बुराई। तो ये जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स खल जो है उनके अंदर, व्यंकटी, व्यंकटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ेपन, टेढ़ापन, सीधा साधा नहीं, टेढ़ापन। तो ये टेढ़ापन जो है या दुष्टपना, दुष्टता, दुष्टता जो है मन में, ये होने के कारण आदमी क्या बन जाता है? खल बन जाता है। इसलिए हमेशा अगर हम चित्रपट या पिक्चर में देखते हैं, एक नायक रहता है और दूसरा खलनायक रहता है। खलनायक क्या है? दोनों दिखने में एक जैसे ही, दोनों को आंखें है, नाक है, होठ है, मुख है, दो हाथ है, दोनों एक जैसे ही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक, सिर्फ नायक है और उसमें जो खलनायक है उसमें खल है। अगर ये खल हम निकालते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ नायक बचेगा। और इसलिए माउली ने खल जो है उनको नष्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो कोई दुष्ट लोग है, जो बुरे लोग है, उनको नष्ट करने के लिए माउली ने नहीं कहा है, उनकी अंदर जो बुराई है उसे नष्ट करना है। और जब बुराई खत्म हो जाती है तब क्या बच जाता है? जब बुराई खत्म हो जाती है तब अच्छाई बच जाती है। इसलिए सुर और असुर, जो सुर में गाते हैं उनका गाना कैसे लगता है? अच्छा लगता है। सुर में गाते हैं गाना अच्छा लगता है और हम कहते हैं महफिल जम गई। लेकिन अगर कोई बेसुरा गाता है तो गाना कैसे लगता है?
गाना अच्छा नहीं लगता, भले उसकी आवाज अच्छी है लेकिन गाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुर में सुर नहीं है, ताल अलग है सुर अलग है, इसलिए उसे बेसुरा कहते हैं। तो सुर और असुर में यही फर्क है, एक सुर में है दूसरा सुर में नहीं है। और सुर क्या है, किसके सुर में गाना चाहिए, जो भगवंत है उसका सुर जो है उसके सुर में अगर गाना हमारा आ गया तो ये सुरीला हो जाता है और सुनने के लिए बड़ा मजा आ जाता है। और यही अगर बेसुरा हो जाता है तो सुनने में मजा नहीं आता। तो ये जे खलांची व्यंकटी सांडो, जे खलांची व्यंकटी सांडो, खल पुरुष जो है उसके अंदर खलता खल तुष्टता जो है उसे खत्म करनी है। तो क्या होगा अगर उसे अंदर उसके अंदर जो दुष्टता है वो खत्म हो जाएगी, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ दुष्टता खत्म होने से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भरना पड़ेगा। अगर मेरे क्लास में कुछ खराब चीज है और वो मैंने अगर फेंक दी, सांडो, सांडो ये शब्द बहुत अच्छा है, मराठी में सांडो मीन्स टू फॉल डाउन, एक्सपेल, अंदर कुछ पड़ा है ग्लास में तो कुछ भरेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और इट विल बी रिमूव। इसलिए कहते हैं जे खलांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, अंदर कुछ भरना चाहिए नहीं तो खालीपन महसूस होगा और ये खालीपन जो है एम्प्टी, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टीनेस मन में नहीं रहना चाहिए, अगर एम्प्टीनेस मन में रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि तया सत्कर्मी रति भाड़ो, सत्कर्म, दुष्कर्म और सत्कर्म क्या होता है, सत्कर्म और दुष्कर्म उसके डेफिनेशन बहुत आप जाएंगे तो बहुत सारी डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन मुझे ये लगता है सत्कर्म मीन्स सत के याद में जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म है। सत कौन है, सत चित आनंद, जो परमात्मा जो है वो भगवान जो है उसके याद में अगर कोई भी मैं कर्म करता हूं तो ये बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि याद इतनी पावरफुल रहती है जो कर्म अच्छा ही रहता है। और दुष्कर्म में कहने की जरूरत नहीं है, याद ही नहीं है तो चांसेस है कि मैं कुछ गड़बड़ करूं, क्योंकि हर एक के अंदर देवता भी है और शैतान भी है, जब देवता निद्रिस्त हो जाती है तो शैतान जागता है, और शैतान को अगर सुलाना है तो देवता को जागृत करना है, इसलिए जागर कहते हैं। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा देवी का मंदिर रहता है उसमें जागर रहता है, जगाना है देवताओं को, जगाना है। हम मंदिर में जाके देवी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर जो देवता है उसे मैं जगाऊं तो सत्कर्म हो जाएगा, और ये सत्कर्म जो है तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, रतिवाड़ो मीन्स मुझे खुशी होनी चाहिए, सत्कर्म करते समय मुझे खुशी होनी चाहिए, मुझे रुचि होनी चाहिए, मेरा मन रमना चाहिए, मन रमता है, मन में खुशी होती है, ऐसे नहीं कि कोई कहता है इसलिए मैं जोर जबरदस्ती करूं, नहीं, अगर मैं खुशी से करूं इसलिए तया सत्कर्मी रतिवाड़ो। एक बार खलता मन से निकल गई और अंदर सत्कर्म के लिए रुचि बढ़ गई, रति बढ़ गई, तो क्या होगा, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, भूता मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, और ये ह्यूमन बीइंग्स का भी बहुत बढ़िया अर्थ है, ह्यूमन, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन इज बॉडी, हम बोलते हैं मिट्टी का पुतला है, तो ह्यूमन इज बॉडी और बीइंग मीन्स सोल, ये ह्यूमन बीइंग मीन्स क्या है, बॉडी तो है शरीर है
लेकिन अंदर जो बीइंग मीन सोल आत्मा है उसे ध्यान रखना है। हम उसको भूल जाते हैं तो क्या होता है, खल प्रवृत्ति बढ़ती है और फिर प्रेम भावना नष्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। वो कैसे, मैत्र क्या है, भूत क्या है, प्रेम क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो गुजर गया, जो बीत गया, उसे छोड़ना जरूरी है अपनी हीलिंग के लिए, अपनी खुशी के लिए, और माफ करना जरूरी है। जिस दिन मैं माफ करना सीख जाऊंगी, क्योंकि जब हमने बात की थी तो समझ में आया था कि हम क्यों नहीं माफ करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अपने आप को कितना दर्द दे रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ये समझे तो माफ करना आसान हुआ। आगे बढ़ते हैं। मुझे किसी से माफी मांगनी है तब क्या करो। हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, माफ करना तो मेरे हाथ में था, मैंने कर दिया, लेकिन मुझे किसी से माफी मांगनी है। अब जब इतने अवेयर हो गए, इतने सजग हो गए, लगा कि मुझसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं गलत था या थी, और बहुत वक्त भी गुजर गया है, लेकिन वो साथ साथ चल रहा है, तब क्या करें?
1: तो बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट रेज किया है कि जब हम माफी नहीं मांगते तो उस बोझ को लेकर के घूम रहे, और वो बोझ हमें तकलीफ देता है, शरीर पर भी इफेक्ट होती है, मन पर भी इफेक्ट होती है। अब प्रश्न यह है कि अगर नहीं मांग सके माफी, तो ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पर बोझ है, रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, फिर भी मैं माफी नहीं मांग सकता हूं, तो ये मेरा ईगो है। बस ये समझ ले कि ये मेरा अहंकार है कि मैं माफी नहीं मांग पा रहा हूं, और उस अहंकार को मुझे खत्म कर देना।
0: Why do I feel guilty? See, उस वक्त जब मैंने किया था मैं सही थी, और उसके बाद क्योंकि मैं अपने आप को गलत नहीं मानना चाहती, मैं अपने आप को बहुत सारे वो देती जाती हूँ लॉजिक कि मैंने इसलिए किया था, ये हुआ, इसलिए हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे बिहेव किया था, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट किया था, उस वक्त रिएक्ट करना ज़रूरी था या ये ज़रूरी था ऐसा। लेकिन अब जब अवेयर हो रहे हैं तो समझ में भी आ रहा है कि यही वो चीज़ है शायद कि जो मैंने क्रिएट की, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। अब ये गिल्ट है, कैसे जाऊँ मैं, नहीं जा पा रहे।
2: देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। कुछ एक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ मुझे उस समय लगता है कि जो मैंने किया वो सही है। इनफैक्ट हमेशा ही हमें लगता है कि जो हमने किया वो सही है, लेकिन थोड़े समय के बाद हमें लगता कि नहीं, मेरा वो कर्म, मेरा वो एक्शन सही नहीं था। दैट इज़ वन प्लेस वेर आई कुड फील गिल्टी एंड मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन कुछ एक सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ओके, अभी भी, उस दिन भी, आज भी, और शायद हमेशा मेरा वो बहुत एक्यूरेट बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, जो मैंने किया वो सही था। लेकिन कई बार मेरा कुछ सही भी उस बात की वजह से किसी और के अंदर दर्द चल रहा है। भले हमें ये समझ में आ रहा है कि उनका हर्ट वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वन थिंग आई अंडरस्टूड इज दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग समबडी एल्सेस हर्ट, नो वन कैन हर्ट मी, आई कांट हर्ट समवन, लेकिन समवन कैन यूज व्हाट आई हैव डन टू हर्ट देमसेल्व्स। तो भी कहीं ना कहीं मेरा कर्म स्टिम्युलस तो बना ना, वो कर्म मेरे लिए सही था। सपोज मैंने आपको कुछ कह दिया, ऐसा मेरे हिसाब से मैंने सही कहा, लेकिन आप उस बात को लेकर अगर हर्ट हो रहे हैं, तो जितनी देर आप हर्ट हैं वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी किसकी तरह ट्रैवल होगी, मेरी तरफ ट्रैवल होगी। अब मैं सही हूँ, फिर भी क्या मैं सॉरी कह सकती हूँ? और क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं सही हूँ, जो मैंने कहा वो सही है, क्या मुझे सॉरी कहना चाहिए? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट
0: टू से सॉरी, यू नो, बिकॉज़ वी से कि मैं तो सही हूँ।
2: अब क्या होगा अगर हम नहीं सॉरी कहते हैं? एंड सिर्फ कहने की बात नहीं है, जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं उनसे कॉन्स्टेंटली वो एनर्जी हमें मिलती जाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गलत थे, हम सोचते हैं कि हम सही हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं, और ये सॉरी अपॉलोजी इसीलिए अटक जाती है बीच में, बात कौन सही है कौन गलत है, सॉरी कहूँ या नहीं कहूँ, सॉरी कहूँ तो वो ऊपर से कैसे रिएक्ट करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो मुझे कमज़ोर तो नहीं फील करेंगे, सॉरी कहूँ तो क्या वो फॉरगिव करेंगे। कईयों के अंदर ये बहुत डर है, चलो मैं तो सॉरी कह दूँ लेकिन क्या वो फॉरगिव करेंगे, मैं उन्हें सॉरी कहने जाऊं वो वापस मुझसे कैसे बात करेंगे। तो ये सारे डाउट्स जब मन में चलते हैं, देन वी स्टॉप आवरसेल्फ फ्रॉम फिनिशिंग दैट नेगेटिव कार्मिक अकाउंट। ये एक नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है, ब्लॉकेज है जिसको हमें स्मूथ करना है. नीड टू थिंक अबाउट दिस. बट
0: अगर ये नहीं हुआ, अगर सॉरी नहीं हुआ, चाहे मैं गलत हूँ या नहीं हूँ, ये रियलाइजेशन है मुझे दोनों बातों में, अगर मैं सही हूँ तब तो मैं कई बार कहता हूँ कि सवाल ही नहीं उठता कि मैं सॉरी कहूँगा. लेकिन अगर मैं गलत हूँ तब भी मैं सॉरी नहीं कह पा रहा, इसी कारण से कि वो मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका अपर हैंड हो जाएगा, यू नो, वो मुझे दबा पाएंगे, तो ये जो गिल्ट है या ये जो है, ये मेरे को क्या तंग कर रहा है.
1: कि ये बात भी जो शिवानी बहन ने कही वो अच्छे से समझनी चाहिए कि चाहे मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है, तो मैं समझ लूँ उनको हर्ट तो हुआ, मैं सही सिर्फ मेरे नज़रिए से था, उसके नज़रिए से तो मैं गलत था. तो अगर मैं वहाँ पर आई पुट माई फुट इन शूज एंड देन सी कि भी कहाँ हर्ट हो रहा है, तब मुझे रियलाइज़ होगा कि भी हर्ट तो हो रहा है, और मुझे माफ़ी मांगने से अगर वो हर्ट दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. और दूसरी बात कि अगर मैं नहीं मांगता हूँ तो उनसे नेगेटिव वाइब्रेशन मुझे कंटिन्यूस मिल रहे हैं, वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, और इससे भी मुझे हार्म होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो ऑरा मेरे तक पहुंचता है और मुझे उसका नुकसान होगा, इसलिए भी मुझे माफी मांगनी है. और ये छोटी सी बात है वास्तव में तो.
0: लेकिन मैं गलत ही नहीं.
2: जब आपको अपोलोजाइज करना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर दूं, ये नहीं है, दिस इज नो चीटिंग ईच अदर. मैं किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रही हूँ? मैं अपोलोजाइज जो मैंने किया उसके लिए नहीं कर रही हूँ. मैं अपोलोजाइज इस बात के लिए कर रही हूँ कि आप हर्ट हैं. टू थिंग्स आर डिफरेंट. आप दर्द में हैं, उस बात के लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ. नॉट जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ किया, ये कांच टूट गया इतना बड़ा, ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल थी लेकिन मेरी गलती से टूटी, आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली, सो बट यू आर नाउ सो मच इन पेन, सो आई अंडरस्टैंड दिस कि मेरे किसी एक्शन ने आपके अंदर ये दर्द क्रिएट किया. तो आई एम सॉरी नॉट फॉर ब्रेकिंग द टेबल, बट आई एम सॉरी फॉर हैविंग बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू टू एक्सपीरियंस सो मच पेन. वो तो सत्य है ना, वो तो झूठ नहीं है ना. हाँ, ये ठीक है, ये मेरी गलती नहीं थी, ये हो गया, या मेरे को लगता है ये सही था, वट एवर, लेकिन आप दर्द में हैं, इज दिस अ फैक्ट, सो आई एम सॉरी फॉर यू हैविंग टू गो थ्रू सो मच पेन. दिस कैन बी से सॉरी टू इच अदर. भले आई वॉज राइट, बट यू हैव इन, यू आर इन पेन, आई एम सॉरी फॉर दैट.
0: लेकिन वहां से फिर रिजल्ट नहीं आता है.
1: नहीं, रिजल्ट आएगा. देखो, कभी करके देखिए, जब हम सॉरी कहते हैं तब आप देखेंगे कि जो वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे. सबसे पहले तो कई बार ये होता है सामने वाला व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं आपकी तो गलती थी नहीं, तो सारी चीज रिजॉल्व हो गई, आप ही उस बोझ को लेकर के घूम रहे थे. दूसरी बात कि वो व्यक्ति रोने लगेगा, तो भी हुआ कि उन्होंने माफ कर दिया, हो सकता है कि अभी हंसने भी लगे. और चलो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आप कहेंगे कि भाई उसने माफ़ नहीं किया, लेकिन आपने तो माफ़ी मांग ली, आप तो हल्के हो गए, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है.
0: अगर नहीं मांगी माफ़ी, अगर गिल्ट में हूँ मैं, या ये सब कुछ चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, व्हाई आई नीड टू डू दिस,
1: तो अंदर तो आपके वो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं ना. सूक्ष्म में वो इफेक्ट हो रही है, जिसे टॉक्सिक इमोशंस का कहा, बल उससे थोड़ी कम, परंतु वो इफेक्ट हो रही है, और वो इफेक्ट सारे बॉडी ऑर्गन्स पर हो सकती है, क्योंकि अंदर में आप बोझ को लेकर के घूम रहे हैं, खुशी का अनुभव नहीं करेंगे.
0: डॉक्टर, अभी आपने कहा कि आप उस कर्म के लिए सॉरी नहीं हो अगर, लेकिन उस इमोशन को आपके अंदर क्रिएट करने का जो इंस्ट्रूमेंट आप बने हैं उसके लिए सॉरी हो सकते हैं. तो जो जैसे मैं माफी मांग रही हूँ, वो तो उम्मीद करता है कि आप उस कर्म के लिए आई शुड फील सॉरी.
2: लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग. अपने आप को थोड़े समय पहले देखते हैं, जब हमें ये नई समझ में आया था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, तब हम ये फील करते थे कि उन्होंने जो कहा उससे मेरा हर्ट क्रिएट हुआ. नेक्स्ट प्रोग्रामिंग ये हुआ करती थी कि वो सॉरी कहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा. होता था ना, इसी प्रोग्रामिंग के साथ हम चल रहे थे कि मैं बुरा भी तब फील करता हूँ जब कोई कुछ कहता है, अच्छा भी तब फील करता हूँ जब कोई उसको चेंज करता है. दैट्स द पावर ऑफ सॉरी. पीपल आर एक्चुअली वेटिंग टू हियर दैट सॉरी. उनकी कोडिंग अंदर ये हुई हुई है कि जैसे ही ये सॉरी कहेंगे आई विल फील फाइन. ये बहुत डेफिनेट है. डेफिनेट कोडिंग हमारी हुई हुई है. वो ये नहीं रियलाइज कर रहे कि पहले उनके सेंटेंस को मैंने लिया हर्ट क्रिएट करने के लिए, अब उनके सॉरी को मैं लेता हूँ अपने आप को बेटर फील कराने के लिए. सॉरी इज वर्क्स एज अ स्टिम्युलेंट प्रोवाइडेड यू आर नॉट जस्ट सेइंग इट ऊपर से, यू आर रियली फीलिंग इट. कई बार आप कुछ लोगों के साथ देखेंगे आप उनको सॉरी कहें, वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं लगता आपने रियलाइज किया है. आप कहेंगे रियली आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड. नो आई डोंट थिंक, मेरे को लगता है आप ऊपर ऊपर से कह रहे हैं. यू नो व्हाई? अभी उनका दर्द नहीं गया. जब तक उनका दर्द नहीं जाएगा आपका सॉरी सच्चा नहीं था. आप चार बार, पांच बार, दो महीने के बाद फिर से, छह महीने के बाद फिर से कहो, द डे दे आर हील्ड दिल से नाउ यू हैव रियलाइज्ड बिकॉज नाउ आई एम हील्ड.
0: अच्छा, इट डजंट मैटर कि सामने वाला
2: शायद छह महीने पहले ही रियलाइज कर चुका था कि वो सॉरी है, लेकिन मेरी हीलिंग नम जब तक नहीं होती ना, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है. इतना डीप मेरी प्रोग्रामिंग ये है कि जिस दिन वो रियलाइज कर लेगा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, बिकॉज मैंने ये कभी नहीं समझा था कि मेरा दर्द मैं खुद ठीक करती हूँ. वी कीप ऑन, देयर आर टाइम्स व्हेन वी कीप ऑन डिमांडिंग सॉरीज फ्रॉम पीपल. सॉरी बोलो फॉर व्हाट यू हैव डन. व्हाई? आप सॉरी बोलेंगे आई विल फील बेटर. दिस इज अ वेरी सटल वे कि जिससे हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं. अब वो अपने को कैसे ठीक कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने को भी फ्री करने में और सामने वाले को भी फ्री करने में.
0: नो, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वेट करते हैं. हम भी तो वेट कर रहे होते हैं.
2: हम तो वेट
0: कि वो सॉरी कहे.
2: यस.
0: और एक्चुअली हम कई बार वेट करते हैं कि उसको रियलाइजेशन भी तो हो.
2: हाँ, तो रियलाइजेशन कब? जिस दिन मेरा दर्द खत्म हो गया उस दिन आपको रियलाइजेशन हो गया. दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग. हाउ डू आई कम टू नो कि आपके अंदर रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा मुझे?
0: सी, वंस यू रियलाइज, अगेन सॉरी कोई ऐसे नहीं कह देता. मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया, तो देन आई विल कम एंड हैव अ टॉक विद यू मे बी कि व्हाई आई डिड दिस, और या ऐसे मैंने किया था तो ये सही नहीं था, आई शुडंट हैव डन दिस.
2: नेक्स्ट मंथ यू माइट डू इट अगेन. आपने रियलाइज किया? नहीं. आप फील कर रहे हो कि हाँ आई एम सॉरी. नेक्स्ट मंथ यू माइट रिपीट द सेम थिंग एब्सोल्युटली ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आपके हिसाब से वो गलत था ही नहीं. वो आपके हिसाब से गलत नहीं था, या वो आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है, वो आपकी संस्कार बना हुआ है. रियलाइजेशन मीन्स स्टॉप, चेक, चेंज, गॉन. कितनी चीजें हम इतनी जल्दी चेंज कर पाते हैं? नहीं, हम रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया इट्स नॉट अ रियलाइजेशन. लेकिन आपका वो एक सॉरी मुझे हेल्प कर देता है टू फ्री माई सेल्फ ऑफ अ लॉट ऑफ पेन.
0: एंड इज इट देन यूजुअली वी आर सेइंग सॉरी जस्ट बिकॉज, सॉरी फॉर क्रिएटिंग हर्ट टू यू, नॉट बिकॉज आई एम रॉन्ग?
2: या मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड फील, बट वी आर नॉट अवेयर कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. आप एक बच्चे को देखो, बच्चे ने कोई गलती कर दी, मदर गुस्सा होकर बैठ गई या मदर रोने लग गई, बच्चे अपने गलती के लिए नहीं सॉरी कह रहा होता, बच्चा अपनी मदर को ऐसे देख रहा होता है ना कि मेरी मदर, मेरी ये बात की वजह से मेरी मदर रो रही है. वो अपनी मदर को चुप कराना चाहता है. बच्चा कई बार रो रहा होता है, मदर चाहती है कि बच्चा चुप कर जाए. मदर बच्चे को कहती है, बच्चे आई एम सॉरी मैंने तुमको ऐसा. व्हाई? शी वांट्स दैट द चाइल्ड शुड गेट हील्ड. द चाइल्ड वांट्स दैट द मदर शुड गेट हील्ड. सो व्हाट इज इट, व्हाट आर वी डूइंग विद ईच अदर? हम एक दूसरे को दर्द से बाहर निकालना चाहते हैं. कर्म के बारे में तो एक्चुअली हम बहुत ज्यादा सोच भी नहीं रहे होते.
0: नहीं, लेकिन अगली बार हमारे सामने वो कर्म आता है हम दो बार सोचते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम.
2: या बिकॉज इट्स गोइंग टू हर्ट माई मॉम, नॉट बिकॉज द कर्म इज राइट और रॉन्ग. सी, दैट इज द थिंग. आप अपने बच्चे को कुछ एक चीज, उसको सपोज आपने अपने बच्चे को कहा कि स्कूल बंक करके नहीं जाना चाहिए, ही माइट स्टिल लाइक दैट थिंग. उसको अभी भी अच्छा लग रहा है वो आइडिया, लेकिन इट माइट हर्ट माई मॉम, दैट इज वाई आई विल नॉट डू इट. Equation is very different. I have not realized that the action is wrong. मेरा उस पर नहीं है realization. अभी मेरे को सिर्फ temporary, क्योंकि कुछ एक दिन पहले ही ये हुआ था, थोड़े दिन के बाद जब मुझे वो hurt वाला scene भूल जाएगा, I will still think of bunking school and going. तो मेरी realization action के बारे में नहीं, मेरी realization कि आपको दर्द हुआ, मैं आपको hurt नहीं करना चाहती, इसलिए sorry. दो बातों में काफी फर्क है.
1: पहली बात अगर हो जाए, मुझे रियलाइज हो कि मेरी एक्शन गलत थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, तो सुपीरियर है. तो सदा के लिए खत्म हो जाएगा.
2: देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ना. देन इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन हम जो रो देते हैं एक दूसरे को, इमोशनली गिल्ट में फील बच्चे ने गलती की, पेरेंट्स क्या करते हैं, बात करना बंद कर देंगे. दिस इज अ वे ऑफ पनिशिंग द चाइल्ड कि मैं नहीं बात करूंगा. बच्चे के लिए पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, यानी स्पेशली जब बहुत छोटे, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति मेरे से नाराज है. वो गोल गोल गोल गोल घूमता रहेगा सॉरी सॉरी सॉरी कहते हुए. व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी ट्राइंग टू टीच हिम अ लेसन, बट दिस इज नॉट द वे. वी आर टीचिंग हिम द रॉन्ग इक्वेशंस इन लाइफ. एक्चुअली उसको उस एक्शन के प्रति लेके जाने की बजाय उस कर्म में क्या गलती हुई, उसका क्या रीजन था, वी जस्ट शोड हिम आई एम हर्ट एंड यू हैव टू से सॉरी. आपका सॉरी बोलने से आई विल बिकम बेटर, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इवन आफ्टर वी ग्रो अप. द इक्वेशंस जस्ट गो ऑन टू बीइंग द सेम थिंग. हम एक दूसरे को हर्ट देखते हैं, फटाफट सॉरी बोलते हैं ताकि आपका मूड ठीक हो जाए. भले मैं गलत था या नहीं था, मैं सॉरी बोल दिया ताकि आप ठीक हो जाओ, मतलब आप अपसेट नहीं हो इतना. That's all that we're doing. But we need to understand that this does make a difference to other people. And most important, mere liye bahut useful hai, provided I'm feeling it from inside. Feel karke kare. Aajkal kai baar hum sirf aise hi sorry bol dete hain taki aap theek ho jao. Then it won't work.
3: Nahi to feel karke hum kya karam pe kaam karenge fir bhi?
2: दोनों बातें हैं ना. अगर कर्म आपको लगा कि गलत है तो आप कर्म पे काम करेंगे, या ये आपको लगा कि कौन सा कर्म से किसको दर्द क्रिएट होता है तो आप उस बात पर काम करेंगे. लेकिन कुछ तो काम करेंगे ना, कहीं तो अटेंशन रख कर अपने अंदर परिवर्तन लेंगे. सॉरी को सिर्फ एक शब्द की तरह यूज करके रिश्तों में एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे ना. यू विल रियली वर्क ऑन व्हाट यू आर सेइंग टू ईच अदर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कई भाई बहनें ऐसे मिलते हैं, दे आर गिल्टी कि उन्होंने कोई अपने पेरेंट के साथ या कोई भाई बहन के साथ कुछ ऐसा किया था, एंड देव लेफ्ट द बॉडी. कहते कुछ ऐसा करवा दो जिससे हम एक बार उनको सॉरी कह सके. यू नो, इतना गिल्ट दे कैन कैरी, एंड उससे उनकी पूरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर अफेक्ट हो सकता है जस्ट बिकॉज टाइम रहते हमने वो सॉरी नहीं कहा था. वो गिल्ट, इतना बर्डन आपके साथ चल सकता है. सो इट कैन बी वेरी डैमेजिंग टू द एंटायर पर्सनैलिटी.
3: वही पूछा जा रहा है कि जो अब ये जो सारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, चाहे वो गिल्ट की है, हर्ट की है, ये अगर हम कैरी करते जाते हैं, अगर लेट को नहीं किया है, सो वेयर डज इट लीड फिजिकली आल्सो?
1: फिजिकली आल्सो इट विल हैव द सिमिलर. जो भी ऑर्गन वीक है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी, या स्पेसिफिक जो ऑर्गन पर उसकी इफेक्ट होनी है वह स्पेसिफिक ऑर्गन पर भी होगी. जैसे गिल्ट की जो फीलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो सकती है. इवन नो, गिल्ट कैन अफेक्ट योर एंडोक्राइन सिस्टम एज वेल, क्योंकि उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो उस प्रकार की बीमारियां आपको होगी.
3: सप्रेस्ड फीलिंग्स या गिल्ट जो है, ये एक जो हम चुप हो जाते हैं, यू नो, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि, और ये जो एक डर कि मुझे माफ करेगा कि नहीं करेगा, तब हम शायद चुप रहते हैं, नहीं बोल पाते हैं. उसको उसको कैसे ओवरकम करें?
1: लेकिन हमने तो बोल दिया, एटलीस्ट हम तो हल्के हो गए. अगर वो व्यक्ति माफ नहीं करता है फिर भी भले हमें नेगेटिव इफेक्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आएगी, परंतु हमारी ओर से तो हम हल्के हो गए. एटलीस्ट 50% बेनिफिट हुआ. अब 50% उस व्यक्ति की गलती है, नहीं कर रहा है, बोले फिर से भी कहो.
3: पश्चाताप की जो बात है सर शिवाजी, पश्चाताप में जो रोना और पश्चाताप में जो हम अपने आप को वन गिल्ट में रख के बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, वो बहुत डैमेजिंग कई बार होता है, क्योंकि उसमें हम बहुत अपना लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं.
2: दो बार गलती हो रही है ना. एक बार जब मैंने वो किया तब गलत एनर्जी क्रिएट की. सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, बहुत जोर से अभी आपको कुछ कह दिया, तो अभी गलती हो गई. अब उसके बारे में मैं 4 दिन गिल्ट में रहूं, हाँ मैंने इस तरह से बात कर दी, मैंने उस तरह से बात कर दी, तो वो गलती एक बार नहीं हुई, कितनी बार हो गई. सो गिल्ट इज वेरी वेरी डैमेजिंग. आज हम बहुत सारी बातों की वजह से गिल्ट में हैं. गिल्ट इज नॉट द सोल्यूशन. पश्चाताप इज नॉट द सोल्यूशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्यूशन. हाँ मैंने पिछली बार ऐसे बात की, ये गलत थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन. मेजोरिटी टाइम वी सी कि सपोज मैंने आज आपसे गुस्सा किया, जोर से किया, कई दिनों तक मैं गिल्ट में भी रही, बुरा भी लगा, लेकिन अगली बार मेरे मुख से फिर उस तरह से बात निकल जाती है. क्यों? क्योंकि जितनी देर मैं पश्चाताप में भी रही, मैं एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रही थी? नेगेटिव. तो आत्मा की शक्ति और भी कम होती जा रही थी. जैसे ही स्टिम्यूलस फिर से आया, मुझे फिर गुस्सा आ गया, फिर मैं अगले कुछ दिन फिर पश्चाताप में रही. I've seen so many people जो कहते हैं जैसे हस्बैंड का वाइफ पर हाथ उठ जाता है, कहते हम नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, बहन आपको नहीं पता जब हम करते हैं हमें इतना बुरा लगता है, हम पक्का करते हैं, हमने फिर अगली बार फिर वही होता है. क्यों? क्योंकि हमने अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं किया. नेक्स्ट टाइम वो नहीं हो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए. ये सारी नेगेटिव थिंकिंग तो मेरी ताकत को और भी कम कर देती है. मेरी गलती बार बार रिपीट हो रही है. पश्चाताप मीन्स जो गलती मैंने की उसको मैंने अब रिपीट नहीं करना है, फुल स्टॉप. उसके बारे में सोचना सोचना सोचना इज एक्चुअली उस गलती को बार बार रिपीट करना. जितनी बार मैं उसके बारे में सोचूंगी मैं वही नेगेटिव एनर्जी खुद को भी और आपको भी भेज रही हूँ. सो इट्स जस्ट वन थॉट कि आई विल नॉट डू इट अगेन, चेंज माई थिंकिंग. फिर आप स्टिमुलस चाहे कुछ भी दो.
3: बट वी ऑलवेज से विल नॉट डू इट अगेन.
2: हाँ,
3: नॉट टू इवन अदर्स,
2: टू योरसेल्फ, टू योरसेल्फ.
3: अपने आप को भी कहते हैं कि हम नहीं करेंगे.
1: पश्चाताप करना अच्छा है लेकिन एक ही बार करो और टोटल चेंज.
2: मतलब इट हैज टू फिनिश.
3: वो कैसे करें? नहीं हो पाता ना,
2: क्योंकि हमने अपने थॉट को नहीं चेंज किया.
3: क्योंकि वही बात है ना कि कर्म को चेंज करना तो चाहा हमने कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम गंदा नहीं बोलेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो नहीं पाता.
2: कहीं ना कहीं हम अभी तक जस्टिफाइड है अपने उस कर्म के लिए. सी दैट्स व्हाई इट्स कमिंग डाउन अगेन टू द सेम थिंग. मैं चाहती हूँ ये रिश्ता ठीक हो जाए, लेकिन उस समय जब मुझे गुस्सा आया था मेरे अंदर एक और थॉट है जो कहता है लेकिन मुझे गुस्सा तो इसलिए आया था ना क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था. तो एक्चुअली तो मेरा गुस्सा जस्टिफाइड था. तो मैंने अपने बिलीफ को नहीं बदला, थॉट नहीं बदली, मैंने सिर्फ अपने आप को कहा अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी. लेकिन बिलीफ सिस्टम, थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन नहीं बदला, वो एक्शन में फिर से आ जाएगा.
1: स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन नहीं किया.
2: बिलीफ सिस्टम ये कि उन्होंने भले कहा गुस्सा मैंने किया था, I have a choice कि I can change my response to any situation.
3: ये गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा नहीं है.
2: नहीं, but my choice of creating the response is totally in my hand, independent of the situation. परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मेरा response मैं create करती हूँ. ये programming मुझे बार बार अगर मैं करूँ, next time मेरा response मेरे control में होगा. तब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ ये बात अब फिर से नहीं होगी.
1: उन्होंने गलती की लेकिन मैं गुस्सा करके दूसरी गलती कर रहा हूँ ना,
3: क्योंकि मैं क्रिएट कर रहा हूँ.
1: हाँ, मैंने क्रिएट भी किया और दूसरी गलती. एटलीस्ट मुझे तो गलती नहीं करनी चाहिए, इसलिए भी मुझे गुस्सा नहीं करना. इसलिए मैं सही बात को चूज करूँ.
3: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमने खुद ये रिस्पॉन्स क्रिएट किया. अगर हम चाहते हैं तो उस बिलीफ सिस्टम पर जाना पड़ेगा. और कौन सी ऐसे इमोशंस हैं जो हमारे को आगे बढ़ने में रोकती हैं?
1: नहीं, वास्तव में तो जो भी आज हम हैं, हम सब में कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है. उन सब को अगर हम देखें तो उसके रूट में कुछ बिलीफ सिस्टम होती है. एक भी हो सकती है, शायद दो तीन भी हो सकती है. एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर सभी करें तो हम टोटली रूट को अच्छे से समझ सकते हैं. कि एक झाड़ का चित्र बनाएं और फिर आज हमारे में जो भी चीज़ें हैं कि कुछ अच्छाई है, जैसे भी मेरे में नम्रता है, एकाग्रता अच्छी है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ये अच्छी बातें. कुछ बुराइयाँ भी हो सकती कि मेरे में आलस है, गुस्सा है, गिल्ट फीलिंग है, वो पूरी लिखे और फिर ये ढूंढे कि इन सब के रूट में एक या दो कोई बातें हैं. देखो, एक दो उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करता हूँ. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको डिप्रेशन लगता था या तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ. वो एक बैंक में थे लेकिन मुझे प्रोजेक्ट देते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और लोग तो जल्दी कर लेते हैं. रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, वाइफ वॉज वेरी गुड, स्टिल ही फेल्ट कि भी मैं उनकी संभाल ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ. एक बेटी थी, उसका ध्यान नहीं रख रहा हूँ. ऐसे सारे उसके सिम्टम्स लिखे. जब फादर की डेथ हुई तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. तो मैंने कहा देखो, सारा ये परिवार है वह भी आपके साथ है और सब लोग आपको इतना सहयोग दे रहे हैं. जब यह बात क्लियर हो गई कि मैं अकेला नहीं हूं तो एकदम ठीक हो गए. उनकी दवाइयां भी चल रही थी, छूट गई 3-4 महीने. तो ऐसे एक बार वो रूट को अगर हम समझ ले तो सब कुछ दूर हो सकता है.
2: इमोशनल ब्लॉक्स, जैसे हार्ट में ब्लॉक्स, वैसे
1: इमोशन ब्लॉक्स है.
3: तो इमोशन ब्लॉक्स को समझा अगर, देखा, तो फिर उसको ठीक भी अपने आप कर पाएंगे क्या?
1: हाँ बिल्कुल, फिर से आत्मा के साथ ही काम करना है.
3: अपने आप को पॉजिटिव दिखाना है,
2: डिटैच होकर. जैसे औरों को बताते हैं अपने को बताना है. सी अगर ये किसी के साथ भी और होता, कोई भी व्यक्ति उनको ये बता सकता, देखो आपकी वाइफ कितनी अच्छी है. यू हैव टू जस्ट बी एबल टू से इट टू योरसेल्फ, लेकिन उसके लिए अपने दर्द से डिटैच होना पड़ता है. दैट इज व्हाई सोल कॉन्शियसनेस हेल्प्स. ये सारी चीजें हम बहुत इजीली कर पाएंगे जब हम अपनी परिस्थितियों से डिटैच हो पाएंगे. हमें परिस्थिति ऐसे दिखाई देगी जैसे वो किसी और की परिस्थिति है. विल बी एबल टू गिव द राइट थॉट्स टू आवर सेल्फ. लेकिन इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है वी स्पेंड सम टाइम विद आवर सेल्फ. यू नो, हमारा क्या हो रहा है, दर्द है, ब्लॉकेज है, नुकसान हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, चलते जाओ. बहुत हम लगता है ये नेचुरल है मुझे, मैं ऐसा ही हूँ करके. वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट इट डाउन, फाइंड योर ब्लॉक, क्लीन योर ब्लॉक. दोनों काम हमें ही करने हैं.
3: रिजॉल्व करने की जो बात है कि जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ पाएगी.
1: कि आपको समझ में आ जाए तो भी वो रिमूव हो जाए.
3: तो ये रियलाइजेशन हमें अपने आप ही अपने आप को देखते देखते होगा. देखने की आदत तो होती जा रही है, समझ भी रहे हैं तरीका. सिर्फ ये नहीं पता था कि ये ब्लॉक्स जो हैं ना सिर्फ जीवन के हर सुख से, अगर शरीर के सुख देखें उससे भी हमें दूर कर रहे थे. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, थैंक यू सो मच. कोई बात मन में है आप हमें ईमेल या फोन पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आगे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति.

मत, कोई के भी पूजो मत, कोई के भी कमी से भजे पूजे में के ढाले रिक्शा कर्म करने सको, जान जो सान जो पचत सुनने मान जो।

चोरी मत करो, तेरी लोई मत काट जा, हिंसा मत करो, दारू मत पियो, रड्डी बाजी मत करो, अनेकी के मत चालो, गोर छोटे गोल करो, गुरु संस्कृति जतन करो।